0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

डिनर गेट टुगेदर हो। द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आप सभी का सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है। बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे सुबह आरती परिवार के संस्थापक महोदय परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण सर आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ।
1: जय हिंद वास्तु कृष्णा। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आजाद हिंद रेडियो के बहुत ही सुंदर से स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया है।

0: तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि जब आप ज्ञान की बातें करते हैं ना कई बार, तो ज्ञान की बातें कई इतनी ज्यादा रूखी होती हैं कि लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह ग्रहण नहीं करते। तो कई बार जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो हम जानते हैं इस बात को, कभी कभी ऐसी दवा पिलाई जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं
1: जी,
0: नादान बच्चे होते हैं
1: जी,
0: उनको जब दवा पिलाई जाती है तो कई बार हम उसमें शहद मिला देते हैं
1: जी,
0: तो शहद मिला के पिलाते हैं तो दवा भी ग्रहण हो जाती है और बच्चे को आनंद भी आता है
1: जी।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आप सभी का सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर स्वागत है। डॉक्टर अतुल कृष्ण सर आज हमारे बीच मौजूद हैं।
1: जैसे कि आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको कि हमारे सुभारती के दृष्टिकोण से हम उनको एक महापुरुष के साथ साथ युग पुरुष कहते हैं
0: जी।
1: और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भारत को वो सब दिया जो कोई भी आसानी से कल्पना नहीं कर सकता कि एक आदमी इतना सब कुछ क्या किसी देश को दे सकता है
0: जी।
1: लेकिन कभी कभी देख के और जान के कि दुख होता है कि जो बाबा साहब को बहुत अच्छा मानते हैं या कुछ लोग न्यूट्रल हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उन बाबा की सच्चाई नहीं जानते
0: जी।
1: तो बाबा को केवल दो दृष्टिकोण से पहचाना जाता है हमारे देश के अंदर, एक तो संविधान निर्माता और दूसरा कि दलित उद्धारक
0: जी।
1: लेकिन जब हम देखते हैं कि बाबा साहब का हम जो पूरा कृतित्व देखते हैं
0: जी,
1: तो हम देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बाबा से अछूता रहा है, जिसमें बाबा का योगदान नहीं है
0: जी।
1: जैसे आप महिलाओं को ले लीजिए, महिलाओं को समानता दिलाने का, उनका न्यायिक हक दिलाने का
0: जी,
1: हर दृष्टिकोण से, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे समाज में कोई और अधिकार है, तो उनको समान रूप से समाज में ऊपर उठाने का काम बाबा साहब ने किया
0: जी।
1: और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो प्रसूति अवकाश है ना
0: जी,
1: ये भी बाबा साहब की ही देन है। ये बाबा साहब ने, जब ये वायसराय के एक परामर्शदाता थे
0: जी
1: अंग्रेजों के टाइम में, तब उन्होंने उनके कहने पर वायसराय ने प्रसूति अवकाश की घोषणा की थी। तो ये कंट्रीब्यूशन लोग नहीं जानते। इसी तरीके से आप देखें कि जो हमारे श्रमिक वर्ग है
0: जी,
1: श्रमिक वर्ग को पहले 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, ये जितना मालिक का मन होता था वो उतना उससे काम कराता था, और जो चाहता था वो उसको वेतन देता था
0: जी,
1: और उसको बोलने का अधिकार नहीं था
0: जी।
1: तो श्रमिकों के लिए बाबा साहब ने कि 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी उनसे नहीं ली जा सकती उनकी मर्जी के विरुद्ध
0: जी सर।
1: और ऐसे ही प्रति सप्ताह उनको एक अवकाश दिया जाना जरूरी है
0: जी,
1: ये बाबा साहब की देन है। इसके अतिरिक्त उनको इस बात का अधिकार उन्होंने दिया कि आप संगठित होकर यूनियन बनाकर अपनी आवाज को उठा सकते हैं
0: जी।
1: तो ये श्रमिकों के लिए उनका योगदान था। अब आप इसके अलावा देखिए कि जो हमारे जल प्रबंधन नीति
0: जी,
1: उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार ये देखा गया ना कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में कहीं तो सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, और कहीं बाढ़ आ रही है
0: जी,
1: तो विभिन्न नदियों को जोड़कर और जहां पर सूखा ग्रस्त क्षेत्र है वहां पर पानी पहुंचाया जाए, तो इस तरह के अटल जी को इसका क्रेडिट दिया जाता है। बिल्कुल, अटल जी ने योजना बनाई थी, वो कार्यरूप अभी तक नहीं ले हो पाया, लेकिन हाँ उस पर काम चल रहा है
0: जी।
1: तो वर्तमान सरकारों का जितना योगदान है, तो आप बाबा साहब का देखिए, उस समय बाबा साहब ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया था
0: जी।
1: और कैसे एक नदी जो जारी है विभिन्न प्रदेशों से निकलकर, तो उनमें कैसे पानी का बंटवारा हो
0: जी,
1: तो ये जल प्रबंधन का उन्होंने पूरा दिया। फिर एक और चीज जो बाबा साहब के बारे में लोगों को नहीं पता कि खेती है मजदूरों के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही
0: जी।
1: उनका विचार था कि हमारे कोऑपरेटिव फार्मिंग हो
0: जी।
1: कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब कि अभी तक क्या है ना कि आप जो गांव के में जाके देखें, उस अब कम हो गया, लेकिन पहले तो बहुत था कि सारी जो जमीनें होती थी वो बड़े बड़े जमींदारों के पास होती
0: जी सर।
1: आज भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज्यादा था। सब जमींदारी जो चलती थी उसमें जितना भी श्रमिक था वो उसमें काम करता था, तो श्रमिक उसका उसको लाभ कुछ नहीं मिलता था, जो उसको मेहनताना मिल गया तो मिल गया,
0: बस मजदूरी जो मिल गई वो मिल गई,
1: मजदूरी जो मिल गई
0: जी
1: गया।
0: सर,
1: तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई सारे देश के अंदर जो खेती है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, और उसमें जो मजदूर है उसको मजदूरी के अलावा जो वहां से लाभ होता है उसका भी एक भाग मिलना चाहिए। तो बाबा साहब कोऑपरेटिव फार्मिंग के बहुत बड़े उनका चाहते थे, वो नहीं हो पाया लोगों ने, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस बात का संदेश दिया। तो उससे दूसरा लाभ क्या होता है कि देखिए, अभी हम जब छोटे छोटे खेत होते हैं
0: जी,
1: तो हम उसमें अच्छी फसल नहीं उगा सकते, अब बड़े बड़े उपकरण हम लोग यूज नहीं कर पाते
0: जी।
1: लेकिन जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी तो जो छोटा खेत है वो बहुत बड़ा खेत हो जाएगा, और उसके अंदर जितनी मशीनरी है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो अधिक फसल उपजा सकते हैं, और श्रमिकों को सम्मान और उसमें से उनका उसका भागीदारी भी मिले। तो ये एक बाबा साहब का श्रमिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था।
0: सर, आम जनमानस को ये सारे योगदान के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है आज भी सर।
1: नहीं है। औद्योगिकीकरण आप देखिए, जहाँ एक और हम ये विरोधाभास देखते हैं, जहाँ एक और हमारे गांधी जी ये थे कि भाई कुटीर उद्योग ही होने चाहिए और हथकरघा और खादी के ऊपर जोर था उनका
0: जी।
1: बाबा साहब ने कहा कि देखिए क्या है कि हमारे यहाँ से जो कच्चा माल बाहर ले जाते हैं अंग्रेज लोग, वो हम पे गुलाम कैसे बने हम, वो हमारी जो आर्थिक शोषण हुआ वो उसका आप जड़ में जाइए। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ से देश में से कच्चा माल ये अंग्रेज ले जाते थे
0: जी।
1: और उसी कच्चे माल को अपने उद्योगों में उसका अंतिम उसका प्रोडक्ट बनाकर
0: जी
1: वो बहुत ही महंगे दामों पर हमें भारतीयों को बेचते थे। तो बाबा साहब इस बात के बहुत बड़े पक्षधर थे कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे
0: जी।
1: क्योंकि उसके बिना उन्होंने कहा देश प्रगति नहीं करेगा। ये बात आप देखिए
0: जी।
1: फिर जब हम बाबा साहब के उसके बारे में देखते हैं तो कितना बड़ा योगदान, आज हम देश हमारा एक है
0: जी।
1: क्यों एक है? क्योंकि यहाँ पर सनातन अभी भी मजबूत है
0: जी।
1: जिस दिन सनातन टूट जाएगा उस दिन ही देश टूट जाएगा। तो बाबा साहब का एक सनातन के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और जब बाबा साहब ने 1935 में घोषणा कर दी थी कि भाई मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं
0: जी।
1: अगर उनका सनातन के प्रति, जो मैं कहता हूँ ना सनातन, हिंदू केवल सनातन अपने आप को सनातन का ऐसा नहीं है
0: जी।
1: हिंदू तो सनातनी है ही, लेकिन जितने भी भारतीय मत हैं जैन सिख बौद्ध ये सब सनातनी है
0: जी सर।
1: इसमें पूजा पद्धति किसी की कुछ हो सकती है, मान्यता कुछ हो सकती है, लेकिन हम सब सनातनी है
0: जी।
1: तो बाबा साहब अगर सनातन से विमुख होते तो उनको कौन रोक रहा था? 1935 में वो धर्म बदल सकते थे
0: जी।
1: और जब ये घोषणा उन्होंने कर दी तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े उनके पास ऑफर आए
0: जी।
1: क्रिश्चियंस ने कहा कि भाई हम आपको पूरा का पूरा एक आइलैंड देने को तैयार हैं और आप ईसाई बन जाइए। उधर से हैदराबाद निजाम ने तो चेक बुक लेके चेक उनका, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हैदराबाद का निजाम था।
0: अच्छा।
1: उसने चेक, ब्लैंक चेक उसने लिख दिया और एक नंबर लिख के बाद उसने बाबा साहब से कहा कि आप जितने जीरो लगा सकते हो उतना जीरो लगा लो।
0: अच्छा।
1: और आप मुसलमान बन जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन मैं सनातन छोड़ दूंगा उस दिन ये देश टूट जाएगा। और सही बात भी थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारे देश से हमारे समाज से जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो, परंतु में जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज में कोई विशेष प्रभाव पड़ नहीं रहा है तो 1956 में उन्होंने अपनी मृत्यु से केवल लगभग 1.5 माह पहले
0: जी
1: उन्होंने सनातनी बौद्ध मत स्वीकार किया।
0: अच्छा।
1: और लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध मत स्वीकार किया
0: जी।
1: तो कितनी बड़ी धर्म रक्षा हुई, सनातन की धर्म की रक्षा हुई बाबा साहब के द्वारा, ये हमें समझना चाहिए
0: जी सर।
1: फिर आप आज जो हमारा रिजर्व बैंक है
0: जी,
1: रिजर्व बैंक को आप जानते हैं कि ये इसकी जो कॉन्सेप्ट था रिजर्व बैंक का, ये आया कहाँ से
0: जी?
1: ये बाबा साहब ने जब शोध अपना किया
0: जी,
1: PhD करी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था
0: जी,
1: उससे उनके शोध पत्र था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये बाबा साहब का शोध पत्र था, इसके आधार पे रिजर्व बैंक की संरचना हुई, स्थापित हुआ वो
0: जी।
1: हम लोगों को बता रहे हैं कि आप इनके प्रति विमुख ना, तो उनके ये सारे जो योगदान जब लोगों को पता चल रहे हैं तो जिसको भी पता चल रहा है वो, कई लोग तो मेरे पास आए
0: जी
1: कि आपने तो हमारी अवधारणा बिल्कुल ही पूरी तरह बाबा साहब के बारे में परिवर्तित कर दी। हम तो केवल ये सोचते थे कि बाबा साहब गांधी जी के विरोधी थे और वो देश के भी बहुत ज्यादा जो आजादी के रूप में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि हम गलत थे
0: जी।
1: तो ये जो लोगों की बाबा साहब के बारे में अवधारणा थी वो हमने काफी चेंज करी है। अब जितने भी लोग आए उन्होंने देखा
0: जी।
1: एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग नहीं जानते कि जब देश का बंटवारा हुआ तो देश के बंटवारे के समय केवल बाबा साहब एक ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरीके से धर्म के आधार पर देश के विभाजन का विरोध किया।
0: अच्छा।
1: उन्होंने कहा ये धर्म के आधार पर कैसा विभाजन होगा कि जिसमें अधिकांश मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं वो तो भारत में ही रह जाएंगे। तो जो ये कहना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते ये तो बात ही गलत है, क्योंकि पाकिस्तान जो जा रहे हैं आप ठीक है राजनीतिक दृष्टिकोण से जिन्ना साहब हल्ला मचा रहे हैं आप उनके लिए दे रहे हैं, लेकिन आप ये कह के भारत का डिवीजन कर रहे हैं कि साहब हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते
0: जी,
1: तो इस आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके बड़े प्रबल रूप से वो विरोधी थे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ये बात सच मान भी ली जाए, जो कि है नहीं सकते कि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते
0: जी,
1: क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उसको मैं भी बिलीव करता हूँ, बाबा साहब भी कहते थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे समाज में जो हिंदू और मुस्लिम दो वर्ग हैं ये एक शरीर है तो एक आत्मा है, और अगर शरीर में से आप आत्मा निकाल दीजिए तो क्या होगा, शरीर किसी काम का है
0: नहीं सर,
1: और अगर आत्मा को शरीर ना मिले तो आत्म भटकती रहती है
0: जी,
1: ना, उसको तो भूत कहते हैं
0: जी सर, जी सर।
1: तो आप भूत बन के रह जाएंगे
0: जी।
1: तो जो विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे शरीर में शरीर भौतिक शरीर और आत्मा दोनों होनी चाहिए, इसीलिए देश के विकास के लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमान साथ रहें। और यही बाबा साहब का मत था, इसीलिए बाबा साहब विरोध करते थे। उनका दृष्टिकोण लोगों को नहीं पता, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई ठीक है अगर मैं मान लूं, जो कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन कल्पना करिए कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो जितने यहाँ पर मुसलमान रह जाएंगे भाई
0: जी,
1: तो वो क्या करेंगे, उनको भी चले जाना चाहिए
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो ये जो इतना मुखर होकर स्पष्ट रूप से कहने वाला अगर कोई था तो केवल बाबा साहब थे। उन्होंने केवल कहा नहीं, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है
0: जी।
1: तो देश के कितने बड़े वो विचारक थे, और आप सोचिए अगर इस उनकी इस बात को मान लिया गया होता उस समय, गंगर बाबा साहब की बात मानी गई होती और देश का बंटवारा नहीं हुआ होता, तो आज हमारी जो कितनी सारी समस्याएं हैं वो हमारे नहीं होती
0: जी।
1: तो इसलिए इस मेले में हमने जहां लोगों को मनोरंजन के साधन दिए, उनको आकर्षण दिए, तो हमने बाबा के बारे में भी उनको पूरी जानकारी दी, उसका बड़ा लाभ हो रहा है
0: जी।
1: समाज को एकजुट करना है। दूसरा, ऐसे ही बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है
0: जी।

0: और बौद्ध मत के बारे में भी कि बौद्ध मत किस रूप में एक पूरी तरह से आप देखिए वैज्ञानिक धर्म है
1: जी
0: ना, जो लौकिक व्यवहार के ऊपर आधारित है। सनातन है, सनातन का अर्थ है जो सदैव से था और जो सदैव रहेगा। तो कोई भी पूजा पद्धति तो सनातन नहीं हो सकती
1: जी।
0: कोई पूजा पद्धति सदैव से नहीं थी, जो चेंज होती रहती है
1: जी।
0: पहले हवन होते थे, यज्ञ होते थे, उसमें बलि दी जाती थी, फिर मूर्ति पूजा होने लगी, फिर ध्यान किया जाने लगा। जो हमारे विभिन्न समय समय पर संत आए, उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देख के लोगों के दोषों को दूर करके पूजा पद्धति में परिवर्तन किए। तो सनातन का जो मूल भाव है वो है हमारा लौकिक व्यवहार
1: जी।
0: अगर हम लौकिक व्यवहार में देखें, हमारे में प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता और समन्वय के भाव है, तो वो सनातन है
1: जी।
0: और हमारे भारतीय मत तो कम से कम जितने भी हैं वो सब सनातनियों को ये भाव समन्वय, समन्वय सबसे महत्वपूर्ण इसमें समन्वय है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मुस्लिम और ईसाई और यहूदी पारसी ये लोग भी समन्वय का भाव रखते हैं तो ये भी सनातनी है
1: जी।
0: समन्वय का अर्थ क्या है? समन्वय का अर्थ यह है कि मैं अपनी मान्यता में विश्वास रखता हूँ, मैं उसको मानूंगा, लेकिन मैं आपकी मान्यता का भी सम्मान करता हूँ
1: जी।
0: मैं विश्वास उसमें नहीं करता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन सम्मान
1: करता हूँ मैं,
0: है ना। ये समन्वय
1: जी,
0: मैं आपकी बात आप अपने स्वीकार करिए, मैं अपनी बात स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी बात आप पे नहीं थोपूंगा, आप अपनी बात मेरे पे मत थोपिए। तो ये समन्वय है, ये हमारे सारे भारतीय मतों में
1: ये दो धारणाएं बिल्कुल टूटी हैं सर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में भी। क्योंकि कहीं ना कहीं आम धारणा ये है कि बुद्ध तो सोते हुए बच्चों के अपने छोड़कर चले गए थे। आपकी बात सुनकर जरूर ये जागरूकता आएगी।

0: जब मैं आपको देखता हूँ, हालांकि पहले भी जब मेरी आपसे इस बारे में बात हुई कि इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत कैसे कर पाते, मैंने आपकी जीवनी का पहला हिस्सा पढ़ा, समझ में आया कि आपका पालन पोषण किस तरह से हुआ, आप जो एक व्यक्तित्व है वो किस तरह से आपने खुद की पर्सनैलिटी को भी बनाया। और करियर के शुरुआती दौर की भी बात हम करेंगे, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर रोड पर जो एक छोटा सा क्लिनिक पहले आपने बनाया, तो मेरे गांव से मैं एक ऑटो में बैठकर सफर किया करता था मेरठ आने के लिए। तो एक बार मैं ऑटो में पीछे बैठा था, दो बुजुर्ग दंपत्ति थे, वो बहुत बुजुर्ग थे, तो एक की आंखों पर काले चश्मे चढ़े थे। मैं नहीं जानता था सुभारती अस्पताल के बारे में, तो वो ऑटो में बैठकर क्या बातें हो रही हैं सर, वो बुजुर्ग दंपत्ति जो बूढ़ी अम्मा थी वो कह रही है कि मेरी आंखें बनाने के लिए जा रहे हैं सुभारती। तो जो बाकी सवारियां बैठी थी वो कह, हाँ हाँ सुभारती बहुत ही सस्ते में हो जाता, बहुत बढ़िया है। उनके पास पैसे नहीं थे सर, यहां से 50-60 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर बैठा कोई गरीब आदमी अगर ये सोच पाता है, कोई बुजुर्ग ये सोचता है कि चलो सुभारती चलते हैं और वहां जाकर मेरी आंखों का इलाज हो जाएगा या कोई और इलाज हो जाएगा, तो ये एक अमूल्य योगदान है सर आपका सुभारती अस्पताल के द्वारा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास आज भी अच्छा महंगा इलाज अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते हैं। तो मैं आवाम की तरफ से, सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा अस्पताल दिया। अभी दो दिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज भी फ्री होता है सर हमारे अस्पताल में, क्या कहेंगे सर?
1: हाँ वासु कृष्णा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी
0: जी सर,
1: तो मेरे पिताजी डॉक्टर कृष्ण कुमार भटनागर थे
0: जी,
1: और उन्होंने मेरे से एक वादा लिया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि भाई आप पुराने, आज के जमाने की बात अपनी जगह, लेकिन पुराने हमारे समय में हम लोग जो भी काम करते थे अपने माता पिता से अनुमति लेके आशीर्वाद लेके ही करते थे
0: जी।
1: तो हमने उनसे आशीर्वाद मांगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए।

0: हम प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक दशा लगा दी थी आशीर्वाद देते समय।
1: अच्छा।
0: उन्होंने ये दशा लगाई थी कि तुम्हें मैं आशीर्वाद तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम मुझे वचन दो कि तुम्हारी क्लिनिक से कभी कोई जना इसलिए वापस नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है।
1: जी।
0: तो मैंने उनको ये वचन दिया था, तो मैं अपने उस वचन का मैंने पालन किया। पहले मैंने अपनी प्राइवेट निजी क्लिनिक खोली, निजी अस्पताल खोले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आकर मेरे से कहा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है या पैसे कम है और मेरा इलाज आप कर दीजिए। मैंने उसको मना किया। हमारे यहाँ वही परंपरा आज भी चली आ रही है। आज बड़े बड़े अस्पताल हो गए ऊपर वाले की कृपा से, मेरे प्रभु कृपा है, तो यहाँ आज भी वही नियम है सुभारती में कि आपके पास पैसे हो ना हो इसका कोई मतलब ही नहीं। मोतियाबिंद तो निःशुल्क होता ही है, डिलीवरी माताओं की निःशुल्क होती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में एक परंपरा रही है कि भाई घर में डिलीवरी हो जाती है तो उससे बड़े नुकसान होते हैं, तो उनकी अच्छा जो घर में डिलीवरी होती है उसका क्या कारण है, उसका मुख्य कारण गरीबी है। तो ठीक है, कुछ बड़े बड़े परिवार के घरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर बड़े घराने हैं, बड़े परिवार हैं, तो अपने घर के अंदर ही अस्पताल सही बना देते हैं, तो वो तो हम नहीं कह सकते कि घर की डिलीवरी है, लेकिन जो गरीब महिलाओं के डिलीवरी घर में हो जाती है क्योंकि वो डरती हैं कि अस्पताल जाएंगे पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, तो ये सब हमारे निःशुल्क होता है, हम उसको निःशुल्क देते हैं। और जो अगर हमारे यहाँ उस निःशुल्क डिलीवरी के बाद भी अगर कोई बच्ची पैदा हो जाती है तो सम्मान पूर्वक उस माँ को 1,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाता है।
1: अच्छा।
0: और उस बच्ची को उसका इंश्योरेंस दिया जाता है कि वो
1: अस्पताल की तरफ से
0: कि इसको अब अगले 5 साल तक किसी भी प्रकार का कोई उससे चार्ज नहीं किया जाएगा, उसको रेगुलरली बच्चे को दिखाते रहें, टीका लगवाते रहें।
1: अच्छा।
0: तो ये सब हम लोग करते हैं।
1: ये तो सर हमें भी नहीं पता था।
0: हाँ।
1: तो अगर कोई भी डिलीवरी यहाँ पर होती है,
0: हाँ,
1: और बेटी पैदा होती है,
0: हाँ,
1: तो अस्पताल उसको इनाम के बतौर माँ को पैसे,
0: हाँ,
1: भी देते हैं,
0: हाँ,
1: और अगले कुछ समय तक इलाज भी 5 साल
0: तक बच्चे का, क्योंकि ये पीरियड होता है ना जिसमें बच्चे को वैक्सीनेशन वगैरह लगना जरूरी है। 5 साल के बाद बच्चे में रोग की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरह हो जाती है, फिर तो आवश्यकता नहीं पड़ती
1: जी,
0: लेकिन 5 साल तक उसको रेगुलर टीका लगवाना जरूरी है। अब वही जो गरीब आदमी है ग्रामीण क्षेत्र का है वो कई बार टीके नहीं लगवाता
1: जी,
0: दोनों ही कारण होते हैं, एक तो ये कारण होता है कि उसको अनजान है वो
1: जी,
0: और दूसरा ये भी कारण होता है उसको डर लगता है कि अस्पताल में जाएंगे तो पैसे मांगे जाएंगे
1: जी।
0: तो बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से भी सुविधाएं निःशुल्क हैं, लेकिन लोग सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि वहां पर जाते वैसे ही डरते हैं। उस भारती की तरफ से हम उनको बाकायदा कहते हैं कि आप बच्चे को पूरे सब उसका टीका वगैरह लगवाइए, दिखाते रहिए कि कोई कमी हो, 5 साल तक सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क होता है।
1: क्या बात है।
0: और जो भी ये तो मैंने कुछ बता दिया आपको, लेकिन कोई सा भी रोग हो
1: जी,
0: हमारी परंपरा यह है सुभारती की, जो मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि कोई भी व्यक्ति हमारे अस्पताल से, सुभारती अस्पताल से, चाहे वो सुभारती अस्पताल मेरठ का हो, चाहे सुभारती अस्पताल हमारे देहरादून में भी एक अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है चक्राता रोड पे झाझरा ग्राम में
1: जी,
0: तो हमारे सुभारती के अस्पतालों में ये परंपरा है, ये नियम है कि किसी भी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे तो भी उसको लौटाया नहीं जाएगा, जो उसकी सामर्थ्य हो वो करे, नहीं तो बाकी हमें।
1: इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि न सिर्फ आपका नाम अतुल है, आप अतुलनीय योगदान कर ही रहे हैं सर, तो हमारे श्रोताओं को और देखने वालों को भी ये पता चली गया आपके माध्यम से कि अगर यहाँ पर डिलीवरी होती है तब भी हर तरह से हर संभव प्रयास किया जाता है मदद करने के लिए।

0: सर अब बात करते हैं आज के समय की। आपने कामयाबी हासिल की अपने जीवन में और मेरे ख्याल से जो भी ख्वाब जो भी सपने आपके बचपन में या युवा पीढ़ी में रहे होंगे आपके सभी पूरे हो गए होंगे, तो क्या अभी कोई और सपना कोई ख्वाब आपका बचता है? सर
1: देखिए जब तक जीवन है तो सपने तो देखने ही हैं
0: जी,
1: और देखने हैं, लेकिन ये सोते के सपने नहीं है
0: जी।
1: जो मैं सपने देखता हूँ जागते में देखता हूँ
0: जी सर।
1: तो देखिए मेरा अब मैं आपने बिल्कुल कहा कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से जब मैं इसका कभी देखता हूँ इसको नजर इस पर डालता हूँ तो मुझे अब नहीं लगता कि मुझे और किसी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही सामान्य घर से निकला। मेरे पिताजी शिक्षक थे जैसे आपने पढ़ाई उसमें
0: जी,
1: और कोई घर में संपत्ति वगैरह किसी तरह का नहीं था। क्लिनिक भी मैंने जो आरंभ में ली थी वो एक चौरसिया नर्सिंग होम में शिफ्ट पर ली थी कि भाई मैं उनके रोगियों को निशुल्क देखूंगा, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए चैम्बर दे दिया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई किराए पे भी क्लिनिक ले सकूं। अपनी क्लिनिक होने की तो बात ही छोड़ दीजिए
0: जी,
1: पर क्लिनिक लेने के लिए किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने इस शर्त के ऊपर चौरसिया नर्सिंग होम में चैम्बर लिया था
0: जी,
1: और आज मेरे पे कोई कमी नहीं है। देखिए मेरठ में पूरा विश्वविद्यालय है, लोकप्रिय अस्पताल है, मेरी बहुत बड़ी 200 गायों की गौशाला है, एक अस्पताल किठौर में है, ऐसे बिजनौर में मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं, और देहरादून में पूरा मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि जितनी भी सोच थी उससे मैंने अधिक प्रभु कृपा से मैंने स्थापित कर दिया। मैंने ये भी स्थापित कर दिया कि आदमी अगर सच्चाई से चलता है ईमानदारी से चलता है तो उसके आरंभ करने के लिए भी पैसा होना जरूरी नहीं है। बिना पैसा हुए भी आप सही रास्ता पकड़ेंगे तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, आर्थिक रूप से भी कमा सकते हैं और सामाजिक रूप से भी कमा सकते हैं। तो ये भी मैंने अपने जो युवा पीढ़ी है उसको जब ये मेरी किताब पढ़ेगा मेरी जीवनी पढ़ेगा ये सब देखेगा तो इस बात को उसको समझ आ जाएगा। तो वहां उस दृष्टिकोण से तो मुझे अब और आगे करने की इच्छा नहीं है। और जैसे मैं आप जानते हैं कि मैं बौद्ध मत को मानने वाला हूँ
0: जी,
1: तो तथागत ने भी कहा है कि भाई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए लेकिन तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी कोई तृष्णा नहीं है कि मुझे अब और नई कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, नया मेडिकल कॉलेज बनाना है या नया अस्पताल बनाना है, ऐसी मेरी कोई तृष्णा नहीं है
0: जी।
1: ये सब काम मैंने अपने बच्चों को धीरे धीरे मैंने दे भी दिए हैं और धीरे धीरे जो रह गए उनमें दे रहा हूँ
0: जी।
1: अब जो मेरा जो सपना है वो सपना ये है कि हमारा जो भारत है वो बौद्धमय हो
0: जी।
1: यहाँ मैं बौद्धमय हो जाने का जो है स्पष्ट कर दूं, बौद्धमय का मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग जो हैं वो अपने अपने मतों को छोड़कर और बौद्ध मतावलंबी हो जाएं
0: जी।
1: जब हम बौद्धमय कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे देश में प्रेम करुणा मैत्री समानता सद्भावना और समन्वय का भाव प्रवाहित हो
0: जी,
1: सबके मन में। आप पूजा पद्धति कुछ भी रखें लेकिन आप में एक दूसरे में समानता होनी चाहिए। आप जो जातियां हैं इनका उन्मूलन होना बहुत जरूरी है। जब तक ये जातियां रहेंगी जब तक ये वर्ण रहेगा तब तक लोग आपस में मिल नहीं सकते। हम जो भी समानता की सद्भावना की बात करते हैं तो वो सब बेमानी है। तो एक मेरा उद्देश्य ये है कि सही रूप में भारत बौद्ध में हो और जो हमारा लौकिक व्यवहार है वो तथागत बुद्ध के सिद्धांतों का पंचशील का आधार लेकर वो स्थापित हो
0: जी।
1: और जो हमारे सनातन के जो परिभाषा है उसको लोग सही रूप में समझें कि जो ये लौकिक व्यवहार से संबंधित जो हमारी सोच है
0: जी,
1: जिसको वो सोच सही लगती है जो उसको सही भी लगती है और अपने जीवन में पालन करता है वो सनातनी है
0: जी।
1: तो ये मेरा है कि हिंदू जैन सिख बौद्ध लिंगायती रविदासी रामदासी और भी जितने भी ये इस तरह के मत हैं हम सब सनातनी हैं और सनातन हमारा एक हो
0: जी।
1: और उसका कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा तो यही है कि भाई हम लोगों को इंसानियत के रूप में रहना है, साथ में ये कि अगर हमें देश को एक रखना है, देश में हमें डेमोक्रेसी को बचाना, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको जनतंत्र दिया
0: जी,
1: तो सनातन का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। कल को आप सोचिए कि अगर दूसरे मतों का यहाँ पर बोलबाला हो गया और उनके नियम चलने लगे तो सबसे पहले जो कुठाराघात होगा हमारे संविधान पे होगा और हमारे जनतंत्र पे होगा। एक तो मेरा सपना ये है और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मेरा सपना है जो दोनों इंटरलिंक्ड हैं
0: जी,
1: ये कब होगा? ये कब तब होगा कि जब हमारे में कोई राष्ट्रीय चरित्र होगा। अभी तक तो हमारे में राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। हमारा जो हम केवल जो हमारी सोच है तो अपने तक है, अपने से निकलते हैं तो अपने परिवार, अपने परिवार से निकलते हैं तो अपनी जाति या अपने धर्म
0: जी,
1: उन तक हमारी सोच जाती है, देश तक तो पहुंच ही नहीं पाती। तो हमारा प्रयास ये है कि युवा वर्ग में बड़ों में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो युवा वर्ग के लिए कर रहे हैं कि युवा वर्ग हमारा समझे, जो 9th क्लास के ऊपर के बच्चे हैं विशेष रूप से, उनमें हम ये भाव उनके विद्यालयों में जा रहे हैं, वहां पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं कि पहले चरित्र समझो और उसके बाद राष्ट्रीय चरित्र समझो। तो ये हम लोग राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की योजना हम लोगों ने रचना के नाम से शुरू की हुई है
0: जी।
1: तो उसमें मैं उस योजना का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ कई लोग जुड़ भी गए हैं जो रिटायर हो गए
0: जी।
1: और रिटायर होने के बाद आदमी क्या करेगा, घर पे खाली है ना
0: जी।
1: तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर घर पे खाली तो खाली क्यों है, आपने जो काम किया अपने जीवन में इतना आपने आपको एक्सपीरियंस हुआ तजुर्बा हुआ उसका लाभ समाज को दो
0: जी,
1: और बिना किसी वेतन के दो। आप तो घर पे खाली बैठे हो
0: जी,
1: तो हमारे साथ चल के किसी कॉलेज में कुछ अपना उद्बोधन दे दो, कुछ लोगों को ज्ञान दे दो
0: जी।
1: तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ हर पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये दो चीजें वास्तव में कर रहा हूँ।

0: भी है। जैसा आपको भी पता होगा कि पूरी दुनिया में आज इंडियन सिविक सेंस की बात हो रही है कि बहुत बुरा हमको बताया जाता है। ऐसा भी बोलते हैं विदेशों में कि इंडियंस आर डर्टी। हम लोगों के लिए बोला जाता है सिविक सेंस नहीं है हमारे भीतर। ये क्या कारण आपको लगता है सर?
1: देखिए, जब हम आत्मावलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि जो हम पे ये आरोप लगाए जाते हैं ये गलत नहीं है
0: जी,
1: ये सही है। आप अभी, मैं तो कभी विदेश गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे संबंधी गए हैं विदेशों के बारे में जानकारी, जो सही जानकारी थी, कि किताबों से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विदेशों में लोग गए हैं सही रूप से उन्होंने मुझे जानकारी दी है, उसमें जो हम देखते हैं तो हम लोगों में वास्तव में सिविक सेंस नहीं है। हम अपने घर का कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। तो हमारा जो ये राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान है
0: जी,
1: उसमें हम सब ये चीजें भी सिखा रहे हैं कि भाई आप, ये देश आपका है, आप समझो। सिविक सेंस में जितनी भी चीजें आती हैं, आप चाहे वो सफाई से संबंधित हो, चाहे आप, अब आप ये देखिए कि कहीं भी हमारे में, हम कहते तो हैं कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं
0: जी,
1: सर्वे संतो निरामया की बात करते हैं कि भाई हम सबकी सोच रखते हैं, लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में अगर कहीं पर लाइन लगी हुई है किसी चीज के लिए, तो सबसे पहले तो हम आगे घुसने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये जो भाव है ना, केवल अपने आत्म केंद्रित जो लोगों के भाव हैं, उसी को परिवर्तन करने की जरूरत है
0: जी।
1: और ये हम इसके जो रचना स्कीम है, इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और ये केवल हमारे प्रयास करने से नहीं होगा, ये हमारे पूरे जितने भी समझदार लोग हैं उनको ये चीज घर से शुरू होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि स्कूलों में जो हैं, जो पब्लिक स्कूल हैं खासतौर से
0: जी,
1: उनमें अधिकांश में ये भाव बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं
0: जी।
1: तो एक घटना आपको बताऊंगा कि हम लोग कार में जा रहे थे
0: जी,
1: उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, तो एक मेरी छोटी बच्ची थी, उसने टॉफी, उसकी आयु होगी लगभग 9 वर्ष के करीब की, तो उसने टॉफी हम सब लोगों ने ली, क्लास मैंने दी सबको टॉफी, तो उसने जैसे मैंने रैपर खोल के लिए, तो उसने मेरे से कहा कि ये पापा ये रैपर मुझे दे दीजिए। अब मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों मांग रही है, खैर हमने दे दिया। फिर मैंने उससे पूछा, सबके ले लिया उसने, तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि आप अभी खिड़की खोलोगे फेंक दोगे बाहर, अब मैं जो हूँ जब कार रुकेगी तो कहीं इसको डस्टबिन में डालूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पूछा कि तुमको किसने समझाया? उन्होंने कहा मेरे टीचर ने बताया। तो ये जो स्कूल है ना, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, आ रहा है परिवर्तन, आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें सुधार नहीं हो सकता, सुधार होगा
0: जी।
1: बिल्कुल
0: जी सर, आपने वाकई में बहुत अच्छी बात बताई। और राष्ट्र चरित्र निर्माण जो योजना है, जो ये मुहिम है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उतना ही अच्छा है, और सिविक सेंस को बेहतर बनाना है ये भी जरूरी है।

0: अब सर मैं बात करना चाहता हूँ उस दौर के बारे में जब आपने स्ट्रगल शुरुआत की और अपना, जैसे आपने बताया आपके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि आप कहीं किराए पर एक क्लिनिक खड़ा कर सकें, तो उस समय पर क्या क्या दिक्कतें आपको आई। मैं चाहता हूँ आप इसलिए भी बताएं कि जो युवा पीढ़ी हम जैसे लोग हैं, स्ट्रगल आता है ना सामने सर, लोग फोन नहीं उठाते या पैसा नहीं होता तो बड़े स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं सर आज, तो उस सबसे विपरीत परिस्थितियों में जब आप कुछ भी नहीं थे तब आपने कैसे डील किया और कैसे आपने कामयाबी की ओर पहला कदम बढ़ाया सर?
1: वासु देखो, ये तो मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ी चीज है कि अपने में विश्वास होना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपने में विश्वास है तो सफलता आपको मिलेगी मिलेगी
0: जी।
1: और अपने में विश्वास केवल यही नहीं होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा, बल्कि ये भी होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे चलूंगा
0: जी।
1: जब आप मन में ये विश्वास करते हो तो रास्ते स्वयं निकलते हैं
0: जी।
1: जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे आरंभ में अनुमति देने से मना कर दिया था, तो मैंने लिखा, ये दृष्टांत अपने पुस्तक में लिखा है कि मेरे पिताजी बिल्कुल मेरे विरुद्ध थे कि मैं प्रैक्टिस ना करूं
0: जी।
1: जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि तुम मेरे से मांगोगे कैसा, मुझे दुकान लेनी है तो तुम मेरे से किराया मांगोगे, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये तो मुझे पता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब मैंने अपना प्रयास किया, मैं अपने गुरु से मिला, मैंने उनसे कहा कि साहब मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे बताया कि चलो तुम जो हो तुम फ्री में काम करने को तैयार हो, मैंने कहा कर लूंगा। अच्छा ठीक है, एक नर्सिंग होम के अंदर वहां के मरीजों को तुम्हें फ्री देखना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: तो मैं तुम्हें बैठने के लिए कमरा दिला दूंगा, तो रास्ता निकला ना
0: जी, जी, जी।
1: मैंने अच्छा अब कभी मैंने ऐसा नहीं किया, बहुत ईमानदारी से मैंने किया, मैंने 84 नर्सिंग होम में जब उन्होंने मुझे कमरा दे दिया
0: जी,
1: और मैं उनके मरीजों को फ्री जाके निःशुल्क जाके देखता था, क्योंकि होते थे किसी दूसरे डॉक्टर के
0: जी,
1: तो अगर मेरे मन में कोई भी जरा सा भी कोई गलत भाव होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये करता कि वो मरीज वहां से टूट कर वो मेरे पास आ जाए, जैसे सामान्यतः हुआ करता है
0: जी सर।
1: मैंने कभी नहीं करा, मैंने कहा कि जो मेरा दायित्व है, बल्कि अगर कभी किसी ने मेरे से, क्योंकि मैं उस अस्पताल में ही चैम्बर में बैठता था और जो बाकी डॉक्टर थे वो बाहर से आते थे जिनके मरीज में देखा करता, तो कई बार वो आके मेरे से कहते कि डॉक्टर साहब हम आपको दिखाना चाहते हैं जो छुट्टी होने के बाद,
0: अच्छा
1: तो मैं मना कर देता था, मैंने कहा मैं आपको नहीं देखूंगा, वो आपका जो डॉक्टर जिसने आपका किया आपको उन्हीं के पास जाइए।
0: अच्छा
1: तो मैंने सिद्धांतों के साथ कभी लालच में आके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं तो अपने सभी युवा साथियों को ये कहूंगा कि रास्ते निकालो, अपने में विश्वास रखो कि हम सफल होंगे, अपने ज्ञान में विश्वास रखो और इस बात में विश्वास रखो कि हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना, स्वतः रास्ते निकलते हैं। फिर जब थोड़े से मेरे पास पैसे हुआ, थोड़े से जमा हो गए, तो फिर मुझे दुकान किराए की दुकान लेने की बात आई
0: जी।
1: तो उस समय तक मेरे बारे में लोगों को ज्ञान हो गया था कि भाई ये अच्छा डॉक्टर है और ये ईमानदार डॉक्टर है, ये किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, फायदा ही करता है, इस पे जो भी दे दो पैसा वो ले लेता है, ना भी दो तो कोई बात नहीं है। ये जब मेरे पास पता चल गई तो पास ही में थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग थी, वहां गौड़ साहब की बिल्डिंग थी
0: जी,
1: तो उनके पास एक दुकान खाली हुई।
0: अच्छा
1: मैंने उनसे पूछा कि आप, मैं लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ले लो। तो उन्होंने कहा कि भाई कितने आपको पगड़ी वगैरह की बात है, कैसे हुई? हमारे एक मित्र मिल गए, उन्होंने उसको जाके कहा, उन्होंने कहा कि ये तो बड़े अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं आपसे कोई पगड़ी नहीं लूंगा।
0: अच्छा
1: हाँ, आप बस किराया दे देना।
0: ठीक,
1: इतना मैं कमा लेता था कि महीने का किराया निकाल दिया उस समय तक। तो मैंने देखा ना, आप अगर अच्छे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सतत प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता आपको अवश्य

0: समाज इतना बुरा नहीं है कि आपको आगे बढ़ना नहीं देगा
1: जी।
0: हाँ, जैसे कि आप में ये विश्वास होना चाहिए, आपको जैसे पहाड़ से आप देखते हैं, जब पहाड़ में एक पानी नदी जब आप चलती है, तो मैंने अपनी जो मैं पुस्तक लिख रहा हूँ उसका नाम भी मैंने जीवन तरंगिनी लिखा है
1: जी,
0: है ना। तो तरंगिनी जैसे एक नदी जब पहाड़ से चलती है तो उसको कितने बड़े बड़े अवरोध सामने आते हैं ना
1: जी,
0: कि पत्थर बड़े बड़े पत्थर उसको रोकते हैं
1: जी,
0: है ना। रुकती है क्या? नहीं रुक पाती, वो आती है, उनसे टकराती है और उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनके दाहिने बाहिने से वो नदी निकल जाती है। और ऐसा भी नहीं कि सीधी जाती हो, कहीं उसको मुड़ना पड़ता है, कहीं उसको झुकना पड़ता है, कहीं उसको बढ़ना पड़ता है, और वो इस तरीके से करके और अपने अंतिम लक्ष्य सागर तक पहुंच जाती है। तो हमें उस नदी की तरह होना चाहिए कि सतत हमें प्रयासरत रहना है, अवरोध आएंगे जीवन में, उनका दाया बाया करके रस्ते निकलेंगे, लेकिन अपने में विश्वास कर होगा तभी होगा ये।

0: कई बार बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी आपके जीवन में आए कामयाबी मिलने के बाद, उसके बाद भी लगातार आते ही रहे। तो जब आपके जीवन को मैं देखता हूँ तो आप जीवन भर संघर्ष ही कर रहे हैं, लड़ ही रहे हैं, मतलब खुद से, कभी समाज से, जो भी परेशानी आई। वो जो मैनेजमेंट होता है सर, कि जब विपत्तियों का टाइम होता है, इंसान को टाइम भी मैनेज करना है, मनी भी मैनेज करना है, परिवार भी देखना है, ये स्किल कैसे कोई भी हम जैसे लोग अपने भीतर जागृत कर सकते हैं?
1: ये भी तुम्हारे वास्तु कृष्णा, तुमने बिल्कुल सही बात की है कि मेरे जीवन में सामान्य ही नहीं बहुत बड़े बड़े विकराल समस्याएं भी आई
0: जी।
1: और वो मुख्य रूप से समस्या इसलिए थी कि मैं अपने सिद्धांतों से हट नहीं सकता था, हटना चाहता नहीं था, क्योंकि मैंने संकल्प लिया हुआ था कि मैं अपने सिद्धांतों का पालन करूंगा
0: जी।
1: सबसे बड़ी समस्या तो ये कि वही देश के अंदर हमारे भ्रष्टाचार, जातिवाद, ये सब जगह फैला हुआ है, और वो सब मेरे सामने, मेरे आड़े हाथों मुझे लेना पड़ा उनको मेरे सामने, लेकिन मैं झुका नहीं। मुझे ये विश्वास था, सत्यमेव जयते पे विश्वास था। और देखिए, वैसे तो हमारी बौद्ध मान्यता में लोग कहते हैं कि सर तथागत भगवान बुद्ध जो थे वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी भ्रम है भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं होता, उन्होंने नॉन कमिटल थे, उन्होंने कहा ढूंढ लो भाई, खोज का विषय है, जब मिल जाए तो बता देना, जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं भगवान का को मानने के लिए इसे तैयार नहीं हूँ। कि आप कहें कि भगवान ने तो ये जातियां बना दी, ये वर्ण बना दिए, तो मैं इसलिए नहीं मानूंगा भगवान को, लेकिन अगर भगवान नहीं है ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो मेरा कहना यह है कि भगवान हो ना हो, लेकिन भगवान की हमको आवश्यकता है। और हमको आवश्यकता क्यों है कि जब हमें ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा हमारे सामने अवरोध पैदा कर देता है, इतना विकराल अवरोध पैदा कर देता है कि जो हम कई बार लगता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, हम टूट जाएंगे। तो अगर हम भगवान की जरूरत यहाँ पर पड़ती है कि अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमें बहुत बड़ा संबल मिलता है
0: जी,
1: कि ये हम अगर कुछ भी सही काम कर रहे हैं तो कोई शक्ति है जो हमें बचाएगी, वो शक्ति किसकी है, वो ईश्वर की शक्ति है। तो ईश्वर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर की हमको आवश्यकता है
0: जी।
1: तो मैंने जब भी मेरे सामने ऐसे विकराल समस्याएं आई हैं, मैंने अपना सिद्धांत कभी सेक्रीफाइस नहीं किया, मैं सही रास्ते पे चलता रहा और मन में ये विश्वास था कि सत्य में जयते है, सत्य की विजय होगी ही होगी। परसीवरेंस मैंने रखी, लगातार मैं लगा रहा और मुझे ये विश्वास था कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे। और जैसे मैंने कहा ना, ईश्वर है नहीं, इट इज ए मैटर, लेकिन मुझे इतना बड़ा उसमें आत्मबल मिला कि मैंने उन समस्याओं का सामना किया और हर समस्या के बाद मैं विजयी होकर निकला और अधिक मजबूत होकर निकला।

0: और आज आप हमारे सामने बैठे हैं सर, और मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूँ कि न सिर्फ मेरे जैसे लोगों का, न जाने अपने असंख्य लोगों का जीवन बदला है। अस्पताल में हजारों लोग अपना रोज जीवन बदल कर जाते हैं। जब वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, वहां वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और बड़े अस्पताल जो महंगे होते हैं वहां वो जा नहीं सकते, तो उनको एकमात्र अंधेरे में रोशनी का दिया नजर आता है सुभारती अस्पताल, और पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाते हैं। मैंने खुद देखा है सर। हालांकि मैंने आपसे 2-5 मिनट मांगे थे, पर बहुत समय बीत गया, क्योंकि आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कि मेरा मन और बात करने के लिए करता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लालची हो जाता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं चाहता हूँ सर, हमारे श्रोताओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्पेशली दो चीजें सबसे अहम है सर। एक तो स्ट्रेस, हर चीज का स्ट्रेस है सर युवा पीढ़ी को। रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, पैसे ना कमाने का स्ट्रेस है, और सोशल मीडिया ने भी एक स्ट्रेस दिया है। तो मैं चाहता हूँ इस परिस्थिति से हम लोग कैसे निकले, इसके बारे में कुछ बताएं सर।
1: देखो, बहुत आपने जो प्रश्न पूछे, ये बहुत ही ऐसे प्रश्न है जिनके बहुत ही

0: सार्थक हैं
1: जी,
0: क्योंकि अभी बहुत सारे युवा जो हैं वो हम देखते हैं कि कोई किसी भी कारण से अपने मिशन में फेल हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मिशन हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत का मिशन हो, कुछ
1: जी,
0: भी हो
1: जी,
0: और वो डिप्रेशन में चला जाता है, अब मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है और बहुत सारे हमारे जो युवा हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं
1: जी।
0: तो मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने में विश्वास रखिए कि आप जीतेंगे। हाँ, हर समस्या के आगे आप अगर उससे दृढ़ता के साथ उसका सामना करेंगे तो उसके बाद जीत आपकी है। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है ना। आप अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं दो दिन के अंदर पैसे बन जा अमीर हो जाऊं, तो ये ऐसा तो सोचना भी चाहिए, जो जो भी चीज बहुत जल्दी आती है वो जाती भी बहुत जल्दी है। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें, आप आराम से अपने मिशन पे अपने कार्य पे आगे बढ़ते रहें, अवरोध आए तो उसकी चिंता ना करें। मानसिक अवसाद का तो मतलब ही नहीं है
1: जी।
0: आप जैसे मैंने कहा ना कि ईश्वर हो या ना हो, आप सबसे पहला विश्वास अपने में रखिए
1: जी,
0: अपने प्रयास में रखिए, अपने ज्ञान में रखिए, और दूसरा विश्वास रखिए कि अगर आप सही हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। ये विश्वास लेके आप चलिए, अपने को कभी भी कमजोर मत मानिए
1: जी।
0: और जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज के लिए सफलता के लिए जल्दी मत करिए, लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी, हर कीमत मिलेगी
1: जी।
0: और अगर आपको कभी कोई संशय हो तो आप जाके दुकान से मेरी जीवन तरंगनी की किताबें खरीद लीजिए और उनको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने कितने विकराल समस्याओं का सामना किस तरीके से किया है और मैं हर समय विजयी रहूं।

0: एक और संदेश मैं जरूर ये देना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता तो अवश्य चाहें
1: जी,
0: उसके लिए प्रयासरत भी हों
1: जी,
0: लेकिन देश को ना भूलें, देश को साथ में रखें। आप मन में ही होना चाहिए कि मैं कोई काम ऐसा ना करूं जिससे मेरे देश को नुकसान हो। तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का भाव आपके मन में होना चाहिए, अवश्य ही आप सफल होंगे
1: जी। सर चलते चलते सुभारती परिवार को लेकर आपका क्या विजन है, आवाम भी ये जानना चाहेगी, क्योंकि गांव में कहीं दूर कोई व्यक्ति के जब डाढ़ में दर्द होता है तो सुभारती डेंटल आने की बात करता है, क्योंकि सस्ता इलाज और अच्छा इलाज यही हो सकता है। ऐसी सुभारती अस्पताल है हमारा, तो इन सब को लेकर आपका क्या विजन है, आपकी क्या इच्छा है जरा बताएं।
0: मेरा सुभारती अस्पताल और सुभारती शिक्षण संस्थाओं के संबंध में मेरा विजन और मेरा मिशन यही है कि समाज के जो कम से कमजोर से कमजोर वर्ग है उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए, पैसा उसके बीच में आड़े नहीं आएगा, ये मेरा वादा है
1: जी।
0: चाहे उस किसी भी तरह का इलाज हो, उस पैसे में उसको कभी कोई समस्या नहीं होगी, उस पे है नहीं है कितना है ये सब बात की चीजें हैं, लेकिन उसको निराशा नहीं होगी, उसका इलाज यहाँ पर होगा। ये मैंने न केवल मैंने इसका पालन किया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं जो कि अब आगे इसको संभाल रहे हैं और संभालेंगे, वो इस बात में मेरी तरह से पूरी तरह से 100% मेरे से सहमत हैं और मेरे साथ उसको लेकर चल रहे हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें, सब लोग जाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फीस देने के नहीं है, हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास इस तरह की योजना है कि हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे या कम है तो कम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको हमारे साथ हमारे मिशन में जुड़कर उसमें कार्य करना है समाज के लिए। तो इस तरह की योजनाएं हैं जिससे कि कोई भी आदमी को ये भी महसूस ना हो कि भाई मेरे को तो पैसे नहीं थे तो मुझे मजबूर होके किसी के रहम और करम पे पढ़ना पड़ रहा है। हम तो ऑफर दे रहे हैं ना कि भाई आपको हम पूरी रियायत दे रहे हैं जितनी आप चाहते हैं, लेकिन बस ये वादा है कि उसके बाद हमारे साथ समाज को बनाने में, समाज के निर्माण में तुम हमारा साथ देना, तो कितना सुंदर है। हम लोग जॉब पूरी कर लेते हैं उसके बाद नौकरी भी अपने आप देते हैं, उसको सैलरी भी हम देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वादा है, सुभारती का मिशन भी है और सुभारती का वादा भी है कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी होगा उसको चिकित्सा और शिक्षा दोनों सुविधाएं उसको अवश्य मिलेंगी। आप आए और आप हमारे ग्रुप में अगर कहीं भी कोई समस्या

0: समस्या होती है, तो हमारे विभिन्न प्रतिनिधि हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ये आजाद हिंद रेडियो भी आपका है, आपसे ही मिल लें
1: जी,
0: और आप हमारे तक पहुंचा दें उनकी बातें, तो हम उनको कभी निराश नहीं होने देंगे। ये मेरा संदेश है और यही मेरा आपके लिए वादा है, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर। ये आपके साथ जो पॉडकास्ट हुआ, जो बैठकर वार्तालाप हुआ, ये मेरे जीवन का रूपांतरित कर देने वाला समय है सर, और आप मेरे हीरो हैं, क्योंकि जीवन के कई खतरनाक और दर्द भरे मोड़ पर आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: आप सुन रहे हैं सुभारती सरगम, वास्तु कृष्णा के साथ।

0: जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आज मैं आपको सुनाता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओरिजिनल वॉइस, जब उन्होंने टोक्यो से अपने रेडियो पर, जी हाँ दोस्तों, नेताजी का जो रेडियो था उसका नाम उन्होंने रखा था आजाद हिंद रेडियो। उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए, उन्हीं के विजन को आगे लेकर बढ़ने के लिए सुभारती विश्वविद्यालय ने अपने रेडियो का नाम रखा है आजाद हिंद रेडियो। हम नेताजी के सपने को साकार करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में हमेशा देशभक्ति की और क्रांतिकारियों की बात करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने रेडियो के प्रसारण में टोक्यो से क्या बोला।
1: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू फ्रॉम टोक्यो। कंट्रीमैन एंड फ्रेंड्स, इन अप्रैल लास्ट यू हर्ड माय वॉइस ओवर अनदर रेडियो इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ आई एम इन टोक्यो एंड आई एम एक्सेप्टिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हियर इन ऑर्डर टू स्पीक टू यू अगेन। सिंस आई स्पोक टू यू लास्ट, नो इम्पोर्टेंट चेंज हैज टेकन प्लेस इन द जनरल वॉर सिचुएशन।
0: आजाद हिंद जिंदाबाद। जी हाँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो, और एक और हिस्सा एक भाषण का सुनाता हूँ आपको। नेताजी की इस आवाज को सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो बोलिएगा जय हिंद।
2: जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
3: हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा।
0: ये तालियों की गड़गड़ाहट जो अभी आपने सुनी, उस समय पर क्या माहौल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सुनते रहिए आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ आपके साथ वास्तु कृष्णा। जय हिंद।

0: नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत ही खूबसूरत वक्त है मेरे जीवन का। मैं काफी दिनों से सर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। हमारे साथ हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के फाउंडर महोदय, हमारे परम आदरणीय और न जाने कितने लोगों के जीवन को इंस्पायर करने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमारे समक्ष बैठे हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आजाद हिंद रेडियो के स्टूडियो में।
1: जय हिंद वास्तु कृष्णा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका आभार करता हूँ।
0: लाखों लोग हैं, युवा हैं, जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। और जब मैं आपसे मिला तो आपकी एनर्जी इस उम्र में भी और जो काम के प्रति जज्बा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से आप लग जाते हैं, जबकि कई युवाओं का ये ख्वाब होता है कि जल्दी से बस पैसा आ जाए और रिटायर हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ये जज्बा कहाँ से सर आपके भीतर आता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं अब भी?
1: नहीं, देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ वो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए।
0: जी।
1: और जो आपने कहा कि इस उम्र में भी, तो मेरी तो अभी तो मैं युवा हूँ।
0: जी।
1: तो आदमी जो है, आदमी कितने वर्ष का इससे कोई युवा या वृद्ध नहीं होता है, उसकी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच युवा है और मैं पूरी तरह से युवा हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस दिन तक भी मेरा जीवन है, अंतिम दिन तक,
0: जी,
1: कौन जानता है, लेकिन मैं इसी तरीके से सक्रिय कार्य करता हूँ। जो भी मैं, मुझे समाज ने बहुत दिया, मुझे इस देश ने बहुत दिया है,
0: जी,
1: जो कुछ भी मैं समाज और देश के लिए कर सकता हूँ,
0: जी,
1: वो मैं करता रहूँ और अंतिम क्षण तक और अंतिम पल तक मैं करता रहूँ। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरफ तो माता पिता के द्वारा संस्कार दिए हैं कि मुझे कुछ करना है,
0: जी सर,
1: और दूसरी तरफ ये प्रभु की इच्छा है कि जो उन्होंने मुझे इस लायक का रखा हुआ है,
0: जी,
1: कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ।
0: जी। एक तो सुभारती विश्वविद्यालय के रूप में, सुभारती अस्पताल के रूप में आपने मेरठ को और पूरे देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के दोनों के क्षेत्र में बिल्कुल अतुलनीय है और आपके नाम से भी मेल खाता है सर। तो मतलब अभी आपका क्या विजन है सुभारती परिवार को लेकर, आप क्या सोचते हैं सर, अगला पड़ाव क्या है?
1: मेरा तो जैसे आप जानते हैं कि सुभारती शिक्षा का केंद्र है,
0: जी,
1: लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी शिक्षा बेकार है जिस शिक्षा को प्राप्त करके सेवा की भावना, समर्पण का भाव, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत ना हो। तो मैं, मेरा प्रोग्राम यही है, मेरी योजना यही है, मेरा विजन यही है कि ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, इन सारे भावों को लेकर आगे बढ़े और अलग अलग नए नए इसके केंद्र स्थापित हों, जिससे कि जो हमारे ये सोच है ये जगह जगह फैले। इसके पास पैसा तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो भी उस सेवा से, चिकित्सीय सेवा से पीछे ना रह जाए, महरूम ना हो जाए, उसको भी सेवा मिले। और हमारे, जहां तक मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, कि हमारे युवाओं में ये भाव पैदा होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, यही हमारा स्लोगन है कि हम कुछ भी करें, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ भी करें, हमारे मन में ये विचार हमेशा
0: होना ही चाहिए,
1: लगातार होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका राष्ट्र पे क्या सवाल है।
0: जी।
1: तो ये भाव अगर हम जागृत कर पाए तो यही मेरा सोच है।
0: जी, जी।
1: कि हमको आजादी अहिंसा से नहीं मिली, हमको आजादी इंडियन नेशनल आर्मी के कारण मिली। और इस बात को जब तक हमारे युवाओं को नहीं बताया जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा। तो आजाद हिंद रेडियो के मैं सभी जो भी इसके चलाने वाले हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको साधुवाद कहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार आजाद हिंद रेडियो के लिए भी मैं कहता हूं जय हिंद आजाद हिंद रेडियो।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: सुन रहे हैं सुभारती सरगम, वास्तु कृष्णा के साथ।

0: जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आज मैं आपको सुनाता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओरिजिनल वॉइस, जब उन्होंने टोक्यो से अपने रेडियो पर, जी हाँ दोस्तों, नेताजी का जो रेडियो था उसका नाम उन्होंने रखा था आजाद हिंद रेडियो। उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए, उन्हीं के विजन को आगे लेकर बढ़ने के लिए सुभारती विश्वविद्यालय ने अपने रेडियो का नाम रखा है आजाद हिंद रेडियो। हम नेताजी के सपने को साकार करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में हमेशा देशभक्ति की और क्रांतिकारियों की बात करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने रेडियो के प्रसारण में टोक्यो से क्या बोला।
1: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू फ्रॉम टोक्यो। कंट्रीमैन एंड फ्रेंड, इन अप्रैल लास्ट यू हर्ड माय वॉइस ओवर अनदर रेडियो इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ आई एम इन टोक्यो एंड आई एम एक्सेप्टिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हियर इन ऑर्डर टू स्पीक टू यू अगेन। सिंस आई स्पोक टू यू लास्ट, नो इम्पोर्टेंट चेंज has taken place in the general war situation.
2: Inqilab Zindabad, Azad Hind Zindabad,
0: Azad Hind Zindabad। जी हाँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो, और एक और हिस्सा एक भाषण का सुनाता हूँ आपको। नेताजी की इस आवाज को सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो बोलिएगा जय हिंद।
3: जय हिंद,
4: जय हिंद,
3: जय हिंद,
4: जय हिंद।
5: हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या फिर मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। हिंदू समाज
0: ये तालियों की गड़गड़ाहट जो अभी आपने सुनी, उस समय पर क्या माहौल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सुनते रहिए आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा। जय हिंद।

0: नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत ही खूबसूरत वक्त है मेरे जीवन का। मैं काफी दिनों से सर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। हमारे साथ हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के फाउंडर महोदय, हमारे परम आदरणीय और न जाने कितने लोगों के जीवन को इंस्पायर करने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमारे समक्ष बैठे हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आजाद हिंद रेडियो के स्टूडियो में।
1: जय हिंद वास्तु कृष्णा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका आभार करता हूँ।
0: लाखों लोग हैं, युवा हैं, जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। और जब मैं आपसे मिला तो आपकी एनर्जी इस उम्र में भी और जो काम के प्रति जज्बा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से आप लग जाते हैं, जबकि कई युवाओं का ये ख्वाब होता है कि जल्दी से बस पैसा आ जाए और रिटायर हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ये जज्बा कहाँ से सर आपके भीतर आता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं अब भी?
1: नहीं, देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ वो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए।
0: जी।
1: और जो आपने कहा कि इस उम्र में भी, तो मेरी तो अभी तो मैं युवा हूँ।
0: जी।
1: तो आदमी जो है, आदमी कितने वर्ष का है इससे कोई युवा या वृद्ध नहीं होता है, उसकी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच युवा है और मैं पूरी तरह से युवा हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस दिन तक भी मेरा जीवन है, अंतिम दिन तक,
0: जी,
1: कौन जानता है, लेकिन मैं इसी तरीके से सक्रिय कार्य करता हूँ। जो भी मैं, मुझे समाज ने बहुत दिया, मुझे इस देश ने बहुत दिया है,
0: जी,
1: जो कुछ भी मैं समाज और देश के लिए कर सकता हूँ,
0: जी,
1: वो मैं करता रहूँ और अंतिम क्षण तक और अंतिम पल तक मैं करता रहूँ। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरफ तो माता पिता के द्वारा संस्कार दिए हैं कि मुझे कुछ करना है,
0: जी सर,
1: और दूसरी तरफ ये प्रभु की इच्छा है कि जो उन्होंने मुझे इस लायक का रखा हुआ है,
0: जी,
1: कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ।
0: जी। एक तो सुभारती विश्वविद्यालय के रूप में, सुभारती अस्पताल के रूप में आपने मेरठ को और पूरे देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के दोनों के क्षेत्र में बिल्कुल अतुलनीय है और आपके नाम से भी मेल खाता है सर। तो मतलब अभी आपका क्या विजन है सुभारती परिवार को लेकर, आप क्या सोचते हैं सर, अगला पड़ाव क्या है?
1: मेरा तो जैसे आप जानते हैं कि सुभारती शिक्षा का केंद्र है,
0: जी,
1: लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी शिक्षा बेकार है जिस शिक्षा को प्राप्त करके सेवा की भावना, समर्पण का भाव, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत ना हो। तो मैं, मेरा प्रोग्राम यही है, मेरी योजना यही है, मेरा विजन यही है कि ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, इन सारे भावों को लेकर आगे बढ़े और अलग अलग नए नए इसके केंद्र स्थापित हों, जिससे कि जो हमारे ये सोच है ये जगह जगह फैले। जिसके पास पैसा तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो भी उस सेवा से, चिकित्सीय सेवा से पीछे ना रह जाए, महरूम ना हो जाए, उसको भी सेवा मिले। और हमारे, जहां तक मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, कि हमारे युवाओं में ये भाव पैदा होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, यही हमारा स्लोगन है कि हम कुछ भी करें, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ भी करें, हमारे मन में ये विचार हमेशा
0: होना ही चाहिए,
1: लगातार होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका राष्ट्र पे क्या सवाल है।
0: जी।
1: तो ये भाव अगर हम जागृत कर पाए तो यही मेरा सोच है।
0: जी, जी।
1: कि हमको आजादी अहिंसा से नहीं मिली, हमको आजादी इंडियन नेशनल आर्मी के कारण मिली। और इस बात को जब तक हमारे युवाओं को नहीं बताया जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा? तो आजाद हिंद रेडियो के मैं सभी जो भी इसके चलाने वाले हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको साधुवाद कहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार आजाद हिंद रेडियो के लिए भी मैं कहता हूं जय हिंद आजाद हिंद रेडियो।
0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी वंशी और लेकर हाजिर हूं आपकी वाला प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सखी और संसार। इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें आपसे करती हूं, कुछ ऐसी बातें जो रिलेटेड हैं आपकी हेल्थ के, कुछ ऐसी बातें जो रिलेटेड हैं हमारी माताओं और बहनों के, तो वही कुछ ऐसी बातें जो आपको कराएंगी रूबरू पूरे संसार से और रखेंगी आपको अप टू डेटेड। अब पीछे क्यों रहना, क्योंकि आज वंशी इज हियर जनाब और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आज के इस प्रोग्राम में कुछ खास होने वाला है। अब वो खास क्या है, इसके लिए आपको लगेगा थोड़ा सा इंतजार, बाकी कुछ गाने भी लग सकते हैं। तो अभी हम इंजॉय करेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, लेकिन बिफोर दैट चलिए इंजॉय करेंगे एक फॉर्मूला ऑफ द डे। तो आज का जो फॉर्मूला ऑफ द डे है वो ये है कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो इसीलिए कहा गया है जब भी कभी बात करते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, तो अपने शब्दों का जो चयन है उसको बड़ा ही आप विनम्र रखें, बड़ा ही पोलाइट रखें, क्योंकि जब जब आपकी वाणी वार करती है तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं और खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो वाणी है ये एक ऐसा हथियार है जो वार करेगी तो सब कुछ खराब भी कर सकती है, लेकिन अगर प्यार करेगी तो सब कुछ संजो भी सकती है ना। तो इसीलिए चलिए इंजॉय करेंगे

इस म्यूजिकल ब्रेक को, और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। बहुत सारी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जो खासम खास होने वाली हैं, और आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ. प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ. आज का प्रोग्राम कुछ खास होने वाला है और आज कुछ ऐसी खासम खास बात आप तक पहुँचाने वाली हूँ जिसके बारे में जानकर आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा. असल में आज हम बात करेंगे विकसित भारत के बारे में और विकसित भारत का जो एक विजन है वो ये है कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उस मौके पर हम अपने इस भारत को, अपने इस राष्ट्र को डेवलप्ड नेशन में तब्दील कर लें, यानी कि विकसित राष्ट्र में तब्दील कर लें. तब तक तो इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं. अब उन कदमों के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, बहुत सारे गोल्स भी हैं, बहुत सारे विजन्स हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम चलिए नज़र डाल लेते हैं कि आखिर विकसित भारत के मुख्य लक्ष्य क्या हैं. तो विकसित भारत का सबसे बुनियादी लक्ष्य यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारना, यानी कि इसकी जीडीपी को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना और साथ ही साथ नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा देना, यानी आर्थिक समृद्धि इसका एक प्राइमरी गोल.

हो जाता है। वहीं बात करें इसके दूसरे गोल के बारे में तो वो ये है कि आप किस तरीके से विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, आधुनिक एयरपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, यानी अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा हमारी कंट्री में होना चाहिए। तीसरा गोल ऊपर की बात करें तो वैश्विक लीडर हम बनना चाहते हैं तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान और स्पेस रिसर्च जैसे कि इसरो के मिशन में दुनिया का हम लीडरशिप करें, या मैं कहूँ दुनिया का हम नेतृत्व करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे विजन हैं जिन पर काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज बड़ी मेन हो जाती है, वो है आत्मनिर्भरता। जी, रक्षा की बात करें, ऊर्जा की बात करें या बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो इन फील्ड्स में किस तरीके से हम विदेशों पर निर्भर हैं, तो उस निर्भरता को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इन सारी चीजों का उत्पादन या निर्भरता अपने ही नेशन में, अपने ही देश में हम बढ़ा सकते हैं। ये कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो अभी हमें साधने बाकी हैं और जिन पर काम अभी चल ही रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत के ऊपर और इसके चार मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। और उन स्तंभ की बात करें यानी कि पिलर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हो जाता है युवा। जी, युवा यानी कि यूथ, जिसमें कि उनके स्किल डेवलपमेंट पर, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, शिक्षा पर काम किया जाएगा और उनके कौशल विकास पर भी काम किया जाएगा। वहीं बात करें महिला के बारे में तो ये दूसरा स्तंभ हो जाता है जहां पर महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर काम किया जाएगा। वहीं तीसरा हो जाता है हमारे फार्मर्स यानी कि किसान भाई, इनके लिए भी आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर नीतियों से किसानों की आय किस तरीके से दोगुनी हो सकती है या उनका प्रोडक्शन किस तरीके से दोगुना हो सकता है, इस पर भी काम किया जा रहा है। वहीं बात करें गरीब की यानी कि फोर्थ पिलर पुअर की, तो उनके लिए पक्के मकान, मुफ्त इलाज और बुनियादी सुविधाएं देकर कैसे गरीबी को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, इस पर भी काम किया जा रहा है। तो ये कुछ हमारे मुख्य स्तंभ रहे विकसित भारत के और इनको हम चाहते हैं कि हम 2047 तक अटेन कर लें, ताकि हमारा जो भारत है वो डेवलप्ड नेशन में काउंट हो जाए, ना कि डेवलपिंग कंट्री में, है ना। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम भी अपना फुल टू यू नो कंट्रीब्यूशन दे इस चीज में और अपना 100% करके दिखाएं, ताकि ये जो गोल्स हैं जिनको अटेन करने के लिए हम दिनों रात कोशिशें कर रहे हैं सभी, वो अच्छे से हम हासिल कर पाएं और एक ऐसे मुकाम पर जाएं जहां पर हम डेवलप्ड नेशन में काउंट हो, विकसित भारत, है ना। तो चलिए ब्रेक के बाद कुछ ऐसी बातें और बताऊंगी आपको और कैसे आपको इससे हो सकता है फायदा, ये भी बताऊंगी। लेकिन एक ले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा। मीनवाइल एंजॉय करेंगे ये गाना।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ आपके पास और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें आप तक पहुँचाती हूँ, वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाती हूँ। और आज का प्रोग्राम ना कुछ इसलिए खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत के बारे में। ठीक, इसका सपना सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नहीं है, इसका सपना सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी या मैं कहूँ आर्थिक तरक्की नहीं करना है, मतलब सिर्फ ये नहीं करना है। इसके पीछे की जो बात है वो है कि इसकी शुरुआत देश के हर घर से की जाए, हर नागरिक की सेहत के साथ की जाए और की जाए सशक्तिकरण से। ठीक, जब तक हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनका जो संसार यानी कि उनका जो परिवार है शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होता है, तब तक तो हम मान सकते हैं कि ये भारत विकसित नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारी सखियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनको भी इस चीज के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो और वो किस तरीके से विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बातें करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो मूल मंत्र है वो है वेलफेयर टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी कि महिला कल्याण से महिला के नेतृत्व में विकास कैसे हो सकता है। आज इस विषय में हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से महिलाएं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अटेन कर सकती हैं, यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण कैसे वो पा सकती हैं और रोजगार उनको कैसे मिल सकता है। देखिए, कुछ ऐसी योजनाएं लॉन्च की गई हैं इस प्रोजेक्ट के तहत जिसको हम विकसित भारत के नाम से जानते हैं, जहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया जा रहा है, जहाँ पर उनकी आत्मनिर्भरता विकसित भारत में 70% यानी कि 70% तक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। और ये लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स को हमारे सामने लाया गया, जैसे कि लखपति दीदी योजना। और इसका जो मकसद है वो ये है कि स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG से जुड़ी जो ग्रामीण महिलाओं की सालाना आय है उसको कम से कम 1,00,000 या उससे अधिक करना है। सबसे पहला टारगेट ये हो जाता है और इसके तहत कौशल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास और बिजनेस सपोर्ट भी उनको दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है, महिलाओं को गवर्नमेंट किस तरीके से अपना सपोर्ट दिखा रही है बिल्कुल वैसे ही महिलाओं को भी इस चीज को समझना होगा और अपने घर से बाहर निकलना होगा, बजट अपने हाथ में लेना होगा और खुद का बिजनेस संभालने की एक सोच रखनी होगी ताकि वो अपने परिवार की लखपति दीदी बन जाए। तो इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन बिफोर दैट चलिए इंजॉय करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके बाद मैं लौटूंगी बहुत सारी बातों के साथ। कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। और आज आपको बता रही हूँ विकसित भारत के अंतर्गत कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो महिलाओं से संबंधित है। जी, किस तरीके से जो सेकेंड पिलर है विकसित भारत के अंतर्गत, उसको एम्पावर करने के लिए काम किया जा रहा है, उसके लिए स्कीम्स बनाई जा रही हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने और अपने बजट को अपने आप ही संभाल ले और बन जाए अपने परिवार की लखपति दीदी। इसी के बारे में मैं आपसे बातें कर रही थी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती थी कि आखिर आप किस तरीके से लखपति दीदी में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या नमो ड्रोन दीदी योजना में किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो योजना है वो सीधे महिला स्वयं सहायता समूह यानी के SHGs के माध्यम से चलती है। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, अपने गांव में जाना होगा या ब्लॉक के ग्राम संगठन यानी के विलेज ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कहूँ ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई BMMU के ऑफिस में आपको जाना होगा और गांव की कृषि सखी या मैं कहूँ बैंक सखी से आपको संपर्क करना होगा। तो ये दो काम जरूरी हो जाते हैं। या तो आप अपने गांव या ब्लॉक के ग्राम संगठन यानी के विलेज ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई BMMU के ऑफिस में। इसके बाद आपको मिलना होगा कृषि सखी से, या फिर आप बैंक की सखी से भी मिल सकते हैं। वहीं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे होगा ये काम, इसके बारे में अगर बात करें तो महिला को सबसे पहले अपने क्षेत्र के एक एक्टिव स्वयं सहायता समूह यानी के SHG का सदस्य बनना होगा। अगर आप पहले से नहीं हैं तो आपको इस चीज के लिए भी काम करना होगा और समूह के जरिए आपका जो नाम है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी के NRLM के पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बिजनेस या ड्रोन ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है और बैंक लोन व सब्सिडी की प्रक्रिया समूह के माध्यम से ही पूरी हो पाती है। इसके लिए जो आपको जरूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो होगा आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता जो SHG से जुड़ा हो, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। अगर आपसे कुछ चीजें मिस हुई हैं तो मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देती हूँ। आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, तीसरा बैंक खाता जो कि आपका SHG से जुड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो के साथ मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से ही कनेक्टेड हो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे लखपति दीदी योजना और नमो ड्रोन दीदी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके लिए आपको जाना होगा अपने गांव या ब्लॉक के ग्राम संगठन में और वहां पर बात करनी होगी कृषि सखी या बैंक सखी से। और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी। बट बिफोर दैट चलिए एंजॉय करेंगे अपकमिंग गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यू ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ विकसित भारत से जुड़ाव रखती हुई कि किस तरीके से विकसित भारत के अंतर्गत महिलाओं के बारे में बातें कही गई हैं और किस तरीके से स्कीम्स को लॉन्च किया गया है महिलाओं के उत्थान के लिए। तो चलिए अब इंजॉय करेंगे ये गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

दीदी योजना के बारे में, और अब मैं आपको बताऊंगी कि नमो ड्रोन दीदी योजना क्या होती है, इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के बारे में तो हमने जाना, जो कि बिल्कुल लखपति दीदी के जैसा ही है, लेकिन इसका मकसद क्या है। असल में महिला स्वयं सहायता समूह को 15,000 कृषि ड्रोन यानी कि एग्रीकल्चरल ड्रोन उपलब्ध कराना इसका मकसद है, और महिलाओं को ड्रोन उड़ाने के साथ साथ खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव की ट्रेनिंग भी इसके अंतर्गत दी जाती है, जिससे कि वो आधुनिक तकनीशियन भी बन जाएंगी। ठीक, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बिल्कुल लखपति दीदी जैसा है, आपको अपने गांव में जाना है और वहां पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के या BMMU के ऑफिस में जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराना है। उसके बाद आपको बैंक सखी से मिलना है और उसके बाद आपको अपने आप को स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG का सदस्य बनाना होगा अगर आप पहले से नहीं है। इसके बाद क्या होगा, आपका जो नाम है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। तीसरे की अगर बात करें तो हमारे पास हो जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, और इसको आप स्टार्टअप इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मकसद है वो है बिना किसी कोलेट्रल फ्री के महिलाओं को अपना व्यापार शुरू करने देना या उसमें बढ़ावा देना। साथ ही साथ मुद्रा योजना के 60% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, ये भी सुनिश्चित करना। तो आप किस तरीके से अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का गठन किया गया और ये स्कीम जो है आपके लिए रखी गई है। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में अगर आपसे बात की जाए तो इसका भी सेम ही प्रोसीजर है जैसा कि मैंने आपको लखपति दीदी के बारे में बताया। वहीं आगे बात करें तो बहुत सारी ऐसी अभी स्कीम्स बाकी हैं जो कि आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी एक ब्रेक लेना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगी कुछ और स्कीम्स की जो कि विकसित भारत के अंतर्गत आती हैं और महिलाओं के लिए स्पेशली डिजाइन की गई हैं।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आजीवंशी और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ इस प्रोग्राम में, कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल आपके लिए कल्याणकारी होती हैं, यानी के आपके काम की होती हैं, खासम खास होती हैं और जिसको सुनने के बाद आपका फायदा भी हो सकता है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ विकसित भारत के बारे में और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा जो प्लान है एग्जीक्यूशन का, वो ये है कि हम कुछ ऐसी बेसिक चीजों को अटेन कर लें जब तक कि 2047 आ जाए और हम अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लें और सेलिब्रेट करें उन 100 वर्षों को। तो इस संदर्भ में हमने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं और कुछ लक्ष्य ऐसे रखे हैं जिनको अभी साधना बाकी है। तो कुछ ऐसी ही योजनाएं आपसे साझा कर रही हूं जो कि सेकंड स्तंभ यानी कि दूसरे स्तंभ से संबंधित हैं, यानी कि महिलाओं से संबंधित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि विकसित भारत के अंतर्गत 4 स्तंभों को मेंशन किया गया है, जिसमें कि गरीब की बात की गई है, ह्यूमन जिसमें महिला की बात की गई है, जिसमें फार्मर की बात की गई है, तो वहीं यूथ की भी बात की गई है। तो आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में और इसके बारे में मैंने आपको काफी सारी स्कीम्स बताई। एक और स्कीम होती है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, यानी कि PMVBRY। इसका जो मकसद है, पहली बार नौकरी जिसको मिल रही है महिलाओं को, उनको सामाजिक सुरक्षा देना, यानी कि उनको 15,000 तक की वित्तीय सहायता देना और ये आपके सीधे जाएंगी बैंक खाते में और 2 इंस्टॉलमेंट यानी के 2 किश्तों में, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य सुरक्षा और गरिमा की, तो इस संदर्भ में भी बहुत सारी योजनाएं हमारे पास हैं, जैसे कि सेहत और संसार को मजबूत करने वाली कुछ योजनाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMVY। इसका जो मकसद है वो महिलाओं को, असल में स्पेसिफिकली उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं या जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उन महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के लिए पहले बच्चे पर 5,000 और दूसरे बच्चे सिर्फ बेटी होने पर 6,000 की नगद सहायता सीधे खाते में दी जाती है, ताकि मजदूरी के नुकसान की भरपाई हो सके और आपको सही पोषण भी मिल सके। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की गई है विकसित भारत के अंतर्गत। वहीं अगर बात करें मिशन के बारे में, वन स्टॉप सेंटर के बारे में, तो इसका जो मकसद है वो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश भर में 800 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर यानी सखी केंद्र काम करें और कर भी रहे हैं। यहाँ हिंसा पीड़ित महिलाएं आपको काफी सारी मदद प्रोवाइड करा सकती हैं, जैसे कि एक ही छत के नीचे कानूनी मदद आपको मिल सकती है, मेडिकल केयर आपको मिलेगी, काउंसलिंग आपकी की जाएगी और अस्थायी आश्रय भी आपको मिलेगा और इसकी हेल्पलाइन जो होती है वो 181 और 112 होती है, यानी कि 181 और 112। बाकी की कौन सी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइए, सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ और बातें चल रही हैं सेहत सखी संसार में विकसित भारत से संबंधित, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी। विकसित भारत में किस तरीके से महिलाओं को वरीयता दी गई है, इसके बारे में बातें की जा रही हैं, और कौन सी ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए ही इंट्रोड्यूस की गई हैं, इसके बारे में आपको बता रही हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY चालू है, और दूसरा मिशन शक्ति वन स्टॉप सेंटर भी चालू है, जिसके अंतर्गत आपको आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी जो सुरक्षा है, उससे रिलेटेड आपकी मदद की जाती है, आपको मेडिकल केयर दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, और अस्थायी आश्रय भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसका हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 है। वहीं बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जी इसका जो मकसद है वो है ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त LPG गैस के कनेक्शन प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो चूल्हे के हानिकारक धुएं से बच सके और उनकी सेहत और समय दोनों की बचत हो सके। तो इसके अंतर्गत महिलाओं को LPG गैस के कनेक्शन बहुत ही आसान प्रोसीजर के माध्यम से दिए जाते हैं। प्रोसीजर क्या है ये भी आपको मैं जल्द बताऊंगी, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसमें एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका जो मकसद है, इसके तहत बनने वाले घरों का मालिकाना हक यानी कि रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से घर की महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है, जिससे समाज में उनकी गरिमा और संपत्ति का अधिकार मजबूत हुआ है। और ये भी बात एक निश्चित हुई है कि महिलाओं का भी एक अपना घर होता है, क्योंकि अभी तक ये धारणा बनी हुई थी और देखा भी जाता था कि महिलाओं को कोई घर नहीं होता आधिकारिक रूप पर, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की इस पहल ने इस बात को और मजबूती दे दी है कि महिला का संपत्ति पर अधिकार होता है, और इस बात को उन्होंने इस योजना के तहत मजबूत किया है। वहीं बात करें शिक्षा और विज्ञान में भागीदारी किस तरीके से महिलाएं कर सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, तो उसमें है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका जो मकसद है वो ये है कि बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए एक बेहतरीन बचत योजना इसको कहा जा रहा है, जिसमें 8.2% की उच्च ब्याज दर पर और पूरी टैक्स छूट आपको मिलती है। न्यूनतम 250 रुपए सालाना से खाता शुरू हो जाता है और उसके बाद एक अच्छा इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, ताकि आप अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए उसको यूज कर सकें। वहीं बात करें संस्थानों में प्रवेश और विज्ञान योजनाओं के बारे में, तो इसका जो मकसद है वो ये है कि सैनिक स्कूलों और नेशनल डिफेंस एकेडमी में किस तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है बेटियों को, इसके साथ ही विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी कि स्टेम STEM के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने और करियर ब्रेक के बाद वापसी के लिए भी वाइज और क्यूराई जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इन योजनाओं का आप लुत्फ उठा सकती हैं। और क्या क्या प्रोसीजर है, कौन सी स्कीम में आप किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन बिफोर दैट एंजॉय करेंगे हम एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ यूं ही बने रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूं और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। सखियों के बारे में बातें हो रही हैं, सेहत से संबंधित योजनाओं के बारे में बातें हो रही हैं और वहीं आप किस तरीके से अपने संसार में चार चांद लगा सकती हैं इन योजनाओं का लुत्फ उठा करके, इस बारे में भी आपसे बातें हो रही हैं। विकसित भारत के अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन सी योजनाओं को चलाया जा रहा है जो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए हैं, इसके बारे में आज बातें आपसे कर रही हूं और बता रही हूं प्रोसीजर्स भी कि किस तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इन योजनाओं का आनंद उठाने के लिए। मैंने आपको लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में पहले ही बताया है, लेकिन अभी बात करेंगे हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में कि किस तरीके से ये योजना गर्भावस्था में आपकी सहायता करती है, आपको कहां जाना होगा, कब जाना होगा, आपको अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा। और अगर खुद से आप ऑनलाइन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको जाना होगा इसकी आधिकारिक पोर्टल पर यानी कि pmmvy.wcd.gov.in पर। इस पर आप जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ऑफलाइन यानी कि आप आंगनवाड़ी सेंटर जाते हैं तो वहां पर आपको आशा दीदी मिलेंगी, उनसे आपको फॉर्म 1A पहले बच्चे के लिए लेना है और अगर आपका दूसरा बच्चा है, अगर वो बच्चा बेटी है तो आप फॉर्म 1B ले सकती हैं। इसे भरकर आपको वहीं पर जमा कर देना है और अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया अपना रहे हैं तो आपको सिटीजन लॉगिन के तहत पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और उसके विवरण को भरकर दस्तावेज को अपलोड कर देना होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, आपको जाना होगा नागरिक यानी कि सिटीजन लॉगिन के ऊपर और वहाँ पर आपको पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको से जो भी जानकारी मांगी जा रही होगी उसका विवरण भरना होगा और दस्तावेज को अपलोड कर देना होगा। और ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि ये काम आप एक लिमिटेड टाइम में ही कर सकती हैं यानी कि गर्भ धारण के 270 दिनों के भीतर ही आपको ये रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, इसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। 270 दिनों के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपको बात ध्यान रखनी होगी। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, असल में आपको इसके लिए चाहिए माता पिता दोनों का आधार कार्ड, माता का MCP कार्ड यानी के मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड आपको चाहिए जिसमें प्रसव पूर्व जांच यानी के ANC की तारीख हो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दूसरी किश्त बेटी के लिए और अगर आप दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं या दूसरी किश्त के लिए बेटी होने पर अप्लाई कर रहे हैं और माता का बैंक खाता जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। इस बात का ध्यान रखें कि माँ के बैंक खाते की जरूरत ही पड़ेगी स्पेसिफिकली, तो अगर आपका खाता नहीं है तो आप अपनी माताओं का, अपनी बहनों का बैंक खाता जरूर बनाएं क्योंकि जो भी योजनाएं हैं, जो ये अमाउंट आता है ये उनके सीधे बैंक में ही आता है और तभी आप उसका उपयोग कहीं अच्छी जगह कर सकते हैं। बाकी और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी, लेकिन बिफोर दैट चलिए एंजॉय करेंगे प्यारा सा गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखी और संसार, मेरे यानी आरजी वंशी के साथ ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ। इस प्रोग्राम में बताती हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, और बताती हूँ कुछ ऐसी योजनाएं भी जिससे कि आप उनका लुत्फ उठा सके, उनको अच्छी जगह उपयोग कर सके। और आज बातें मैं कर रही हूँ विकसित भारत के अंतर्गत आने वाली कुछ स्कीम्स के बारे में जो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ही डिजाइन की गई हैं। चलिए बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि बेटियों के भविष्य के लिए आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके बारे में है। जी, आपको इसके लिए कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा अपने नजदीकी डाकघर यानी के पोस्ट ऑफिस या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे कि SBI या PNB या BOB, ऐसी किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जैसे कि IPPB या SBI अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी इसे ऑनलाइन खोलने की सुविधा दे देते हैं, तो ये आपको ट्राई करना होगा। बिल्कुल वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर बता देती हूँ। आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में बेटी और माता पिता की जानकारी आपको डालनी होगी, और इसके लिए न्यूनतम कम से कम 250 रुपए की नगद या चेक राशि के साथ आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। दस्तावेज काउंटर पर जमा करना होगा और खाता तुरंत आपका तैयार हो जाएगा खुल करके, और आपको एक पासबुक भी मिल जाएगी। इसके लिए जरूरी दस्तावेज जो हो जाते हैं वो होते हैं बेटी का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड। साथ ही साथ आपको चाहिए निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल ले सकते हैं आप इसके लिए, या फिर राशन कार्ड भी इसके लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, और पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जो आपको इस स्कीम यानी के सुकन्या स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए चाहिए होगा। इसके बाद बताऊंगी आपको एक और योजना के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एंजॉय करेंगे कुछ गाने, और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। आज आपसे बातें कर रही हूँ विकसित भारत से संबंधित, और किस तरीके से हमारी महिलाएं इस विकसित भारत के अंतर्गत योजनाओं का लुत्फ उठा सकती हैं और अपने आप को लाभान्वित कर सकती हैं। ऐसी कुछ योजनाएं मैंने आपको बताई, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कैसे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और कहाँ पर आपको जाना होगा। आपको इसके लिए जाना होगा अपने सबसे नजदीकी LPG गैस एजेंसी के डीलर के पास, या फिर आप जा सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल यानी के PMUY.gov.in पर। इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद की गैस कंपनी आपको चुननी है, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना है, अपना नाम और मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर आप ऑफलाइन बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गैस एजेंसी से उज्ज्वला फॉर्म लेना होगा। इसमें अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी और साथ ही ये डिक्लेरेशन भी करनी होगी कि आपके घर में पहले से कोई LPG कनेक्शन नहीं है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि एजेंसी आपके दस्तावेजों की जांच करेगी और पात्रता अगर आपकी सही पाई गई तो आपको मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, चूल्हा और रेगुलेटर आपके नाम अलॉट कर दिया जाएगा। इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए आपको राशन कार्ड जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम हो, साथ ही साथ घर की वयस्क महिला का आधार कार्ड आपको चाहिए, और बैंक की पासबुक आपको लगेगी, परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आपको सबमिट कराने होंगे। और दोस्तों, आज का जो ये प्रोग्राम है वो अभी हम यहीं तक रखते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम एंजॉय करेंगे कुछ गाने और उसके बाद आपसे बात करूंगी थोड़ी और, लेकिन क्या बताऊंगी ब्रेक के बाद ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी शो होस्ट और दोस्त आरजे वंशी, और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। आज आपसे बातें कर रही हूं विकसित भारत से संबंधित, और आज मैंने कुछ ऐसी स्कीम्स बताई जिसको आप एक महिला होकर के लाभ उठा सकती हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जो आपकी शिक्षा और भविष्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों और सखियों, योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन फायदा आपको तभी मिलने वाला है जब आप सही दरवाजा खटखटाएंगी। अगर आपको लखपति या ड्रोन दीदी बनना है तो आज ही आप अपनी आंगनवाड़ी या गांव के स्वयं सहायता समूह की दीदी से मिल सकती हैं। अगर आपके घर में नन्नी परी आई है तो पास के पोस्ट ऑफिस आप जा सकती हैं, बैंक जाकर के सिर्फ 250 रुपए से उसका सुकन्या खाता खोल सकती हैं। और हाँ, अगर आप माँ बनने वाली हैं तो उन सखियों के लिए 5,000 से 6,000 की मदद सीधे बैंक खातों में पाने के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर आप जा सकती हैं, या फिर आंगनवाड़ी में भी MCP कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन आप करवा सकती हैं। बहुत ही सिंपल से दस्तावेज हैं इसमें जो कि आपको नीडेड होंगे, वो है आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और राशन कार्ड। इसके लिए आप इनकी फोटोकॉपी को हमेशा तैयार रखें, और विकसित भारत का हिस्सा बनने के लिए पहला कदम उठाइए। और कोई भी उलझन हो, कोई भी परेशानी हो तो आप बिल्कुल हमें भी कॉल कर सकते हैं, नंबर 9639012111 हो जाता है हमारा। और इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और आज के प्रोग्राम में आपको कौन सी बात काम की लगी इसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं, और अगला प्रोग्राम आपको किस विषय पर चाहिए ये भी बात आप मुझसे साझा कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, उसके बाद आई बी बैक टू यू अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।

0: Joker.
1: अम्मा मियाँ, पान खा के तो मजा ही आ गया। अब एक काम करो, एक बढ़िया सी सिगरेट दे दो जिसे पी के कलेजे में ठंडक पड़ जाए।
2: अरे क्या बात है मियाँ, लगता है 20-25 लाख वाला बीमा करवा लिया है या लॉटरी लग गई है।
1: नहीं भैया, बीमा तो नहीं कराया है, पर काहे?
2: आप जिस तरह से तंबाकू और सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं उससे जल्द ही आपके घर में भयानक मेहमान आने वाले हैं।
1: भयानक मेहमान कैसे होते हैं भैया?
2: अरे जैसे कैंसर कुमार, दमा रानी और टीबी।
3: जी हाँ, पान मसाला खाना व धूम्रपान करना जानलेवा है। इससे आपको कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग और टीबी हो सकता है। तो आज ही एक कदम बढ़ाएं अपनी सेहत की तरफ। आओ ये संकल्प करें, धूम्रपान को बंद करें।
4: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद होगा कि हम पहले भी टीबी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर इस विषय पर लौटे हैं। वजह कि टीबी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। मैंने खुद कई बार गांवों में लोगों को कहते सुना है, अरे टीबी तो पहले हुआ करती थी, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं, हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीबी कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं, मौसम बदला है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या टीबी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीबी की जांच के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमेशा कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी।
1: धन्यवाद आरजे जी, और मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। आरजे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीबी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। दरअसल आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिनकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा थकान बनी रहती थी। घर के लोग पूछते क्या हुआ तो वह हंसकर कह देती, अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था, शाम होते होते हल्का बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हुई। लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुआ, बलगम की जाँच हुई और फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
0: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन टीबी आखिर है क्या?
1: देखिए साथियों, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, रीढ़, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
0: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्या हर टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी 2 तरह की हो सकती है, एक लेटेंट टीबी जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वे सक्रिय नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते और वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीबी जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों की एक्टिव टीबी दूसरों तक फैल सकती है,
0: तो ये फैलती कैसे है?
1: जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इन्हें सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों में।
0: गांवों में लोग कहते हैं साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है।
1: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
0: ठीक है टीकन भाभी, लेकिन अब ये तो बता दो किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: अगर 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या बलगम में खून आए, तो तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए।
0: टीकन भाभी, क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
1: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं, इसलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहद जरूरी है।
2: क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
1: जी हाँ, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, एचआईवी और डायबिटीज से प्रभावित लोगों, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
2: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो यह सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक हैं। पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है, लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
2: तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है?
1: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच है बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी के जीवाणु मौजूद हैं या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती रही है और आज भी महत्वपूर्ण है। आजकल लोग बनात और ट्रूएना जैसे नाम भी सुनते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होते हैं।
2: आजकल लोग बनात और ट्रूएनाट जैसे नाम भी सुनते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होते हैं।
1: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं। इनकी खासियत यह है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कहीं बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में बहुत मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
2: और एक्सरे की क्या भूमिका होती है? क्योंकि जब भी कोई लंबे समय तक खांसता है, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरे लिख देते हैं।
1: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की पहचान में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जो टीबी की ओर संकेत करते हैं, फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और भी विशेष जांचें की जाती हैं, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इनसे यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावी होंगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
2: साथियों, बात बिल्कुल साफ है। अनुमान नहीं, जांच जरूरी है। खांसी हो तो घरेलू नुस्खों में महीनों न उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं।
0: खांसी हो लगातार तो मत करना इंतजार, समय पर जांच कराओ, टीबी को दूर भगाओ। सेहत सही, लाभ कई।
2: टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूँगा, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करती है जो खुद अस्पताल पहुँचते हैं?
1: नहीं, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसे हम पैसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुंचते हैं, गांवों, बस्तियों, दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
2: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुँच रही है।
1: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
2: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है।
1: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो बाकी सदस्यों की भी जांच करवाना बेहद जरूरी है। इसे संपर्क जांच या कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की जांच जरूर होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
2: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर और शर्म है। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं कराते और दूसरों को भी नहीं बताते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्तों पर असर पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं है, यह कोई पाप नहीं है, यह कोई चरित्र की कमी नहीं है, यह एक सामान्य चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा समझदारी है। समय पर जांच न कराने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को हो सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा रहे हैं?
1: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखें। पहली, अगर खांसी 2 सप्ताह से ज्यादा रहे तो जांच जरूर कराएं। दूसरी, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथी, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच कराएं। और पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
2: और मैं इसमें एक छठीन बात जोड़ना चाहूँगा। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि थकान उम्र की वजह से है, उन्होंने सोचा कि कमजोरी सामान्य बात है, उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच ही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर सेहत की शपथ लेते हैं।

0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: खांसी रहे दो हफ्ते से पार, जांच कराना है समझदार। टीबी हरेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करके ही रुकेंगे।

0: डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।
1: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है। नई राह है, नई मंजिल है।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920085।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। हमारी धरोहर हमारा गर्व है, इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं, इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें, विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। और इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कपिल, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। सर, स्वागत है आपका।
1: जय हिंद एंड थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके साथ में जो है इस पॉडकास्ट में बैठा हूं और अपने फैकल्टीज और अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ अच्छा यहां बता पाऊंगा।
0: सर, सबसे पहले आपके विजन के बारे में एंड आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जो हमारी विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, उसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो सारी भावनाएं, सारी वैल्यूज जो है वो दिखती हैं, और बच्चों को इंजीनियरिंग के साथ में हमारी कल्चरल वैल्यूज को सिखाया जाता है, उनको संस्कार सिखाए जाते हैं, उनको सोसाइटी में भविष्य में इंटरमिंगल होना है वो चीज सिखाई जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ में हम तकनीकी जो शिक्षा है उसको हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चे उसको ग्रहण कर और देश के मूल्यवान नागरिक बनकर समर्पित होते हैं। और इसी क्रम में बच्चों के साथ में हमारी फैकल्टी भी, हम हर साल उनके लिए कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, और उन प्रोग्राम्स को करवाने के लिए जो इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और जो इंडस्ट्री में उस टाइम पर जो चीजें चल रही होती हैं वो हमारे वो शिक्षकों को उनके ऊपर ट्रेन करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है और जो एकेडमिक्स है उसके बीच में कोई गैप ना रहे, कोई अंतर ना रहे। और देखा जाए तो हमारे पास में अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल में अधिकतर सभी ब्रांचेस हैं। हम अगर शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी कई सारे कंसंट्रेशन हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है पहला, दूसरा है बिग डेटा एनालिटिक्स, तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कंप्यूटर साइंस के कंसंट्रेशन हैं। इसके साथ में हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मतलब एविएशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं, हमारे पास डिफेंस में कोर्सेज हैं, हमारे पास मास्टर्स में अधिकतर सारे कंसंट्रेशन हैं, वो चाहे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो मास्टर्स, चाहे कंप्यूटर साइंस में, अधिकतर सभी ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं। तो ये सब चीजें संगठित करती हैं एक अच्छी शिक्षा पद्धति को, और जो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं और जिस चीज में उनकी रुचि होती है उसी में वो अपने आप को एडमिशन लेकर उस चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स जो है वो स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी हमने फिलहाल हमारी जो काउंसिल है, टेक्निकल काउंसिल है, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उससे हमने AICT आइडिया लैब जो होती है उसके लिए हमने ग्रांट लिया है, हमें AICT ने अप्रूवल दिया है, और उसके ऊपर हमने कई करोड़ रुपए लगा के हमारी एक आइडिया लैब तैयार हुई है, जिसके अंदर सभी मशीनें बिल्कुल नए स्तर की है, बिल्कुल जो मार्केट में ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड है। बच्चे उस AICT आइडिया लैब में जाकर जो मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्ड है उनको डेवलप करते हैं। अभी हमने फिलहाल में ही अगर देखा जाए तो हमने एक इनोवेशन इवेंट होता है जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज करवाती है, उस अन्वेषण के अंदर हमारे बच्चों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थ रीजन में हमारे बच्चों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, और उसके अंदर 30 यूनिवर्सिटीज आई थी, 30 यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों ने कॉम्पीट करके फर्स्ट रैंक लेके आना, वो जो हमारे प्रयोग है, हमारे प्रयास है, चाहे वो AICT आइडिया लैब है या और बच्चों के लिए टीचर्स के लिए जो रिसर्च फैसिलिटीज हमने यहाँ डेवलप की है उसके अंदर बच्चे जाके, टीचर्स जाके जो काम करते हैं उसी का कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन है।
0: सर, डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जहां तक बात आती है हमारी फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज हमारी इस टाइम पर बड़ी अच्छी है, मैं कहूंगा कि अनपैरेलल्ड मैच है। आप इस पूरी बेल्ट में देखेंगे तो जो शानदार सेट हमारे पास में फैकल्टीज का वो शायद ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता हो। अधिकतर सारी फैकल्टीज हमारे पास में वो PhD होल्डर्स हैं और IIT से ग्रेजुएट हैं, NIT से ग्रेजुएट हैं, वो बच्चों के साथ में जो अच्छी स्किल्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग देती हैं। और जहां तक बात है बच्चों को हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं, बच्चे जो हमारे साथ में पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो उसके बाद में उसको गेट की तैयारी हम कराते हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स में नौकरी निकलती है उसमें बच्चे एलिजिबल होते हैं गेट क्वालिफाई करके। तो वो सब करने के बाद में बच्चा जो है जब यहाँ पर तैयारी उसको मिल जाती है, बच्चे को कहीं बाहर कोई अलग वर्टिकल उसको तलाशना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था कि बीटेक करने के बाद में बच्चा जो है वो इंडस्ट्री का जो गैप है उसको फिल करने के लिए वो दिल्ली नोएडा में जाके ट्रेनिंग किया करता था, पर आज की डेट में हमने इंडस्ट्री से पार्टनरशिप की है और उन इंडस्ट्रीज को हम अपने कैंपस पे लेके आए हैं और वो हमारे कैंपस पर ही बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चा जो वो ट्रेनिंग लेने के लिए पहले बहुत दूर जाया करता था वो आज उसको यहीं पे मिल जाती है। हमारे कैंपस के अंदर वो सुविधा हमने उपलब्ध करवाई हुई है। हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में MOUs किए हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए हैं। हिस्टन टिलोटसन यूनिवर्सिटी के साथ में भी हमारे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम है जहां पर हमारे बच्चे वहां पर जा सकते हैं अमेरिका और अमेरिका के बच्चे यहां पे आ सकते हैं। ऐसे ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्रांस की और जर्मनी की है उनके साथ में भी कुछ MOUs किए हैं जहां पर बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज में जा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ में हमारे बच्चे जो है वो भविष्य की तैयारी करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं, नागरिक के साथ में एक अच्छे टेक्नोक्रेट बनते हैं जो देश की उन्नति में और भागीदारी में एक अच्छे तरीके से सहयोग देते हैं।
0: सर, आज के टाइम में जहां बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं या AI की हेल्प से सीख रहे हैं, ऐसे में इंजीनियरिंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जहां तक बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक एडेड एडवांटेज है जो पहले बच्चों को नहीं मिलती थी, है ना, अब मिलना शुरू हुई है। तो इसको बच्चे एडेड एडवांटेज के तौर पर लें, नहीं तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का काम है वो YouTube पे नहीं चल सकता। YouTube पे आप खाली लर्निंग कर सकते हैं, पर अगर आपको जो है टीम वर्क में काम करना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको लैब एक्सपोजर लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना है तो आपको इंडस्ट्री में जाना होगा। तो जो गैप है, जो टीम वर्क और जो मेंटोरशिप है, जो वो टीचर के सामने बैठ के बच्चा अपनी प्रॉब्लम जब रखता है, टीचर उसके ऊपर 1-to-1 उसकी काउंसलिंग करता है, वो सब चीजें यूनिवर्सिटी में ही, कैंपस में ही मिल सकती है, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब को बच्चा जो है एक एडेड एडवांटेज ले और उससे ज्यादा कुछ ना, उसकी एक फैसिलिटी है।
0: ठीक है सर, अब आगे बढ़ें और बात करें AI को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
1: AI से तो मैं ये देख रहा हूं पिछले काफी समय से कि AI जो है वो अगर ना हो तो आज के समय में आधे लोगों की जॉब चली जाएगी। लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए AI के ऊपर, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा कि जो इंजीनियर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो AI नहीं सीखेंगे, उनके लिए सीखना मजबूरी होगी, नहीं सीखेंगे तो वो शायद कॉम्पीट ना कर पाए अपनी स्किल्स में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्किल्स सीख के आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहीं पर नॉर्मल स्किल्स के साथ में किसी इंजीनियर ने AI की भी हेल्प ली हुई है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 4x बढ़ जाती है, 5x बढ़ जाती है। तो जब 5x वाला एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के पास में अवेलेबल होगा तो वो नॉर्मल प्रोफेशनल क्यों लेगी? तो AI सीखना सबकी मजबूरी बनेगी और वो बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि AI जो काम आप नॉर्मली जो है पूरे दिन में करते हैं, AI उसको 5 मिनट में आपके लिए फैसिलिटेट कर देता है। तो आपका पूरा दिन बचता है, वो पूरा दिन आपके लिए और वैल्यूएबल चीजें करने के लिए बचा हुआ है, आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं।
0: सर, एम्प्लॉयबिलिटी गैप भी आजकल थोड़ा बढ़ चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी गैप इसलिए है कि बच्चा कॉलेज आता है, आज की डेट में थ्योरी पढ़ता है, एग्जाम पास करता है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम पास करना है। इंडस्ट्री एग्जाम पास नहीं मांगती है, इंडस्ट्री मांगती है उसके अंदर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशंस, उसका डिसिप्लिन, उसके अंदर और वैल्यूज जो इंडस्ट्री में चाहिए होती है वो चीज मांगती है। बच्चा सिर्फ पास होना जानता है, वो गैप हटेगा जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी, स्किल एनहांसमेंट की बात होगी, तो ये गैप अपने आप हट जाएगा। हम मोर ओवर जो है फोकस करते हैं, जो आमतौर पर जो लोग फोकस करते हैं वो करते थ्योरी के ऊपर। हमारी जो अप्रोच है सुभारती के अंदर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो इन्हीं सभी सोच के साथ में बच्चे को हम शिक्षा देते हैं। इंजीनियरिंग शिक्षा जो है वो इन्हीं पद्धति के ऊपर दी जाती है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम लैब के अंदर टाइम उसका स्पेंड करवाते हैं, तो जब वो स्किल उसकी डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो गैप अपने आप खत्म हो जाएगा।
0: सर, कोई नए कोर्सेज जो अभी स्टार्ट हुए हों उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
1: देखिए, हमने कई सारी क्रॉस डिसिप्लिन कोर्सेज को भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जनरेटिव AI को तो हमने पूरा सारे डिसिप्लिन्स में हमने डाल दिया है। और आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में हम ऑटोमेशन में आ जाते हैं, मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन आ जाता है। हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ में हम जो ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एम्बेडेड सिस्टम के साथ में IoT की बात करते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी जो चीजें हैं ये बड़ा हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए, और हम रेडी हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ।
0: सर, आप बात करें स्टार्टअप्स की या बात करें प्लेसमेंट की, प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
1: देखिए, जहां तक बात आती है प्लेसमेंट्स की, मेरा मानना है प्लेसमेंट्स भी जरूरी है, बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है और हमारे जो संस्थापक महोदय हैं उनका भी विचार है कि बच्चों को स्किल्ड बनाकर हम बच्चों को नए नए उद्यम जो है वो शुरू करवाएं। स्टार्टअप इंडिया के तहत हम उनसे स्टार्टअप खुलवाएं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनकी स्किल्स डेवलप करवाकर उनसे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, उनके अच्छे अच्छे कोलैबोरेशन करवाएं। उसी क्रम में हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की स्थापना की, हमने स्टार्टअप सेल की स्थापना की, जो बच्चों को आए दिन ये उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसके लिए वो रेडी करते हैं। जहां तक बात आती है प्लेसमेंट की, तो बच्चा जो इन तैयारी से बिछड़ जाता है, मतलब कहें तो वो ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई कोर्स करता है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ना वो स्टार्टअप के ऊपर कोई लर्निंग करता है, तो मैं समझूंगा उस बच्चे को तो कम से कम शुरुआत में एक दो साल नौकरी करनी चाहिए। नौकरी का क्या एनवायरमेंट होता है, अपने अपने कलीग्स को कैसे डील करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है, अपने कस्टमर को कैसे डील करना है, फिर वो सब चीजें जो हमारे यूनिवर्सिटीज में उसको फ्री में मिल रही है वो प्लेसमेंट में जाके कंपनीज में वो चीज जब तक नहीं लेगा, जब तक वो एक सफल उद्यमी नहीं बन सकता, एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो प्लेसमेंट उन लोगों के लिए जरूरी है जो हमारे यहाँ पर ये स्किल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो स्टार्टअप तो बहुत अच्छा है।
0: सर, आप बात करना चाहेंगे आपकी लीडर फिलोसफी के बारे में।
1: देखिए, मैं सबसे पहले मैं विश्वास करता हूँ कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। जो आपकी दिशा है वो महत्व रखती है, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो चीज सेकेंडरी है। अगर आपने गलत दिशा चूज कर ली और उस पर स्पीड से भागे जा रहे हैं तो वो दिशा आपको गलत गोल की तरफ ले जाएगी। तो अपने आप को, बच्चों को जो मार्केट में इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में एआई का ट्रेंड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मार्केट में है, और कुछ नहीं तो क्या क्या चीज मार्केट में चाहिए, बच्चे उस पर जाएं। और इंजीनियरिंग में कैसे सक्सेसफुल बना जाता है एक करियर के लिए, बच्चे को क्या क्या तैयारी करनी होती है, कम से कम वहां से सीख ले। हम तो सिखा ही रहे हैं, हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप सेल में ये सब चीजें सिखाई जाती है, रिसर्च का एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर है। उनसे अलग अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उस मेहनत के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको अपने अंदर इम्बाइव करनी होगी, और थ्रू आउट लाइफ ये दोनों चीजें तो आपके अंदर रहनी ही चाहिए अगर आपको आपकी दिशा और दशा दोनों सही है तो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी कमाल की जानकारी देने के लिए। एंड अब आपसे मैसेज लेना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए।
1: देखिए, लाइफ में अगर मैं कहूंगा कि इंजीनियरिंग में भी कोई एक छोटा सा कोई शॉर्टकट से कोई आप जल्दी सक्सेस नहीं ले सकते। सक्सेस लेने के लिए आपको डिसिप्लिन होना, अपनी कोर वैल्यूज को कंसिस्टेंटली अपने अंदर मेंटेन करना, जो आपकी अच्छी वैल्यूज है उनके साथ में, और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरमेंट में डिसिप्लिन सिंसियरिटी के साथ में अपने काम पर फोकस करना। अगर नौकरी मिलना आपका टारगेट है तो आप गलत दिशा में हैं। नौकरी लेना बहुत आसान है, पर नौकरी पर बने रहना उसके लिए आपको ताउम्र आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, आपको स्किल एनहांसमेंट करने होंगे, और वो जरूरी भी है। तो मेरा यही मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए कि अपने आप को हमेशा अग्रसर रखें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। आने वाले 5 साल में एक पूरी दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म होने जा रही है एआई की मदद से, तो क्या हमारी पीढ़ी उसके लिए तैयार है? उसके लिए तैयार होना है तो हमें अपनी सोच को, अपने कार्यस्थल को, अपने पूरे इकोसिस्टम को अपने हिसाब से अपने आप को उसके अंदर ढालना होगा। जो उस इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी अच्छी खूबियां हैं उसको हमें इम्बाइब करना होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड अभी जो श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। बाकी फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: ओटीपी किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज का ये खास पॉडकास्ट उनके लिए है जो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास अतिथि सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम। मैम स्वागत है आपका।
1: पंकज जी थैंक यू और धन्यवाद आपने मुझे आज इस अवसर पर बुलाया।
0: मैम हमारे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में चल रहे कोर्सेज के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
1: सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी विधि के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है और उत्तर भारत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो BA LLB LLM LLM एग्जीक्यूटिव PG डिप्लोमा PhD और LLD प्रोग्राम को देता है।
0: मैम अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे, कोई बच्चा आकर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है?
1: अगर हम यूजी कोर्स की बात करें दैट इज BA LLB उसमें 10+2 आपका होना चाहिए और 45% एग्रीगेट होता है। उसमें हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है संस्था का, तो उसके माध्यम से वो प्रवेश ले सकता है BA LLB में। इसके अलावा PG डिप्लोमा का हमारा कोर्स है। PG डिप्लोमा हम लोग ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉ, पेटेंट, IPR इन विषयों पे कराते हैं। इसमें किसी भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इसमें प्रवेश ले सकता है और इस विषय पर अपने जो भी आप ह्यूमन राइट्स हैं, पेटेंट हैं, उस पर आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।
0: मैम कितने टाइम ड्यूरेशन के सभी कोर्सेज हैं, यूजी के भी और पीजी के भी?
1: हमारा जो BA LLB का कोर्स है ये 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जो हमारा पीजी डिप्लोमा का कोर्स है वो 1 वर्ष का कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे संस्थान में मास्टर्स में LLM है। LLM जो 2 ईयर्स कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है और उसमें हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देते हैं। और जो हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन है हमारे संस्थान में, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड द कॉर्पोरेट लॉ। इन 4 स्पेशलाइजेशन में विद्यार्थी जो है अपने इंटरेस्ट से कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है और हम लोग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की डिग्री मास्टर्स में देते हैं। इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स में LLM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। दोज हु आर प्रोफेशनल, जो लोग जॉब में हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा LLM एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम है। ये 3 वर्षीय प्रोग्राम है।
0: मैम आपने इन तमाम कोर्सेज के बारे में बताया और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप पर एडमिशन खोजते हैं, तो क्या हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पर भी?
1: हमारा संस्थान डिफरेंट स्कॉलरशिप देता है, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप देता है। उसमें एक क्राइटेरिया बना है, 90-100 पे आपका यूजी अगर आप करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 50% आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही वो सारी ट्यूशन फीस पे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा मास्टर्स में भी यही व्यवस्था है और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप 90-100% का एक पूरा बॉक्सेस बने हुए 90-100 और 80-80.9%, तो वहाँ पर बच्चों को सुविधा स्कॉलरशिप की अवेलेबल है। इन स्कॉलरशिप के अलावा भी हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जो एलुमिनाई है उनके लिए स्कॉलरशिप है, आर्मी पर्सोनल के लिए स्कॉलरशिप है, साथ ही साथ जो मार्टियर्स हैं उनके डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी हमारी संस्था जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है।
0: मैम यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो किस तरह का स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है?
1: पंकज जी मैं आपको बताऊं कि हमारी जो संस्था है, हमारा जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है और हम लोग जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। और हमारा संस्थान कंटिन्यूस बच्चों को जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है उसको फॉलो करते हुए उनको मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन कराता है, उनको क्लाइंट काउंसलिंग सिखाता है, जजमेंट राइटिंग कराता है, कोर्ट विजिट, जेल विजिट, लोक अदालत विजिट, ये सब कराता है। इसके साथ ही साथ हमारे संस्था में जो एजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एक हमारा फ्री लीगल एड क्लिनिक है जहां पर बच्चे जो है क्लिनिकल सारे एस्पेक्ट सीखते हैं और फ्री लीगल एजुकेशन, वहां फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड कराई जाती है। दोज हु आर रिक्वायर्ड द फ्री लीगल एड, जिनको विधिक सहायता की आवश्यकता होती है, वो हमारे यहाँ आकर निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करते हैं और ये 24/7 हमारे यहाँ चलता है संस्थान में। तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो फील्ड में जाके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख सकते हैं, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले, प्रोफेशनलिज्म में एंटर करने से पहले वो सारी विधा सीख जाते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे डील करना होगा।
0: मैम करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, जो भी कोर्सेज आपने बताया यूजी के हैं या पीजी के हैं, तो आगे करियर में वो क्या क्या कर सकते हैं?
1: पंकज जी विधि के क्षेत्र में जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। आप BA LLB का कोर्स करने के बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप डिफरेंट लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी लॉ फर्म बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो आप जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, बैंक के क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विधि के क्षेत्र जो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में विधिक जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर बीएलएलबी के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है और आप कुछ भी, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, आजकल फैशन लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ अगर हम मास्टर्स की बात करें तो बच्चा बीएलएलबी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जब मास्टर्स करता है, एलएलएम करता है, तो एलएलएम करने के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो एकेडमिक्स में जा सकता है, वो यूजीसी नेट क्लियर कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, रिसर्च को ऑप्ट कर सकता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एलएलएम फर्स्ट ईयर करने के बाद, मास्टर्स का पहला साल करने के बाद ही यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर इन लेटर और रिस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं कि 75% अटेंडेंस है तो वो उसको बच्चा करता है और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, उसका आउटकम हमें मिलता है।
0: मैं वैसे तो हम लगभग सभी बातें इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जिन भी बच्चों तक ये हमारा पॉडकास्ट पहुंच रहा है और आगे जुडिशरी के क्षेत्र में या आगे वकालत के क्षेत्र में अपना करियर जो बच्चे देखते हैं इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके पास अगर थोड़ी सी क्वेरी अभी बच जाती है तो क्या रास्ता है, किस तरीके से वो कॉलेज जा सकते हैं, एड्रेस क्या है?
1: हमारा जो प्रमुख संस्थान है ये NH 58 पर एस्टैब्लिश है, आप कभी भी आकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आकर हमसे क्वेरी कर सकते हैं।
0: तो अभी अभी आपने सुना सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम को, और उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड अब आपको ये चुनना है कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको आगे क्या करना है, अगर आप लॉ के क्षेत्र में आना चाहते हैं और पीजी आपको करना है तो आपको क्या करना है वो आप समझ सकते हैं। बाकी अभी हम सुनने जा रहे हैं उन बच्चों को जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें।
2: जय हिंद, मेरा नाम सृष्टि सिरोही है और मैं बीएलबी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपके साथ सुभारती से जुड़े अनुभव साझा करूंगी। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो लगा 12th के बाद क्लास टीचर ने जो सपोर्ट किया ऐसा सपोर्ट कहाँ ही मिलेगा किसी कॉलेज में, पर यहाँ का मेंटर मेंटी सिस्टम एक स्ट्रेंथ बना और साथ ही ऐसी गाइडेंस दी कि जो आज तक इतना सपोर्ट करती है कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो सिर्फ उनसे संपर्क साध लिया जाए तो वे हर मुश्किल हल कर देते हैं। दूसरा, यहाँ की लाइब्रेरी जो हर प्रकार के सब्सक्रिप्शन और साथ ही जर्नल्स और न्यूज़पेपर और छोटी से बड़ी बुक्स हमें प्रोवाइड करती हैं। सुभारती के अगर ब्लॉक्स में घूमो या कैंपस को विजिट करो तो देखोगे कर्नल लक्ष्मी सहगल से लेकर झलकारी देवी, जिनके नाम इतिहास में छुपे रह गए, जो सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपने आंगन में उन्हें जगह दी और साथ ही उनका नाम अमर कर दिया। सुभारती यूनिवर्सिटी के 4 क्लब, कल्चरल, लिटरेरी, इनोवेशन और स्पोर्ट्स क्लब, बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इंटरेस्ट से जुड़ी चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही सबसे अच्छा, सुभारती के टीचर्स जो हमें हमारे फ्रेंड्स और साथ ही गुरु दोनों प्रतीत होते हैं। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी, सुभारती सिर्फ करियर ही नहीं बनाता, यह एक चरित्र का निर्माण करता है। धन्यवाद।
3: जय हिंद, मैं ओम ठाकुर, विधि संकाय के चतुर्वर्ष का छात्र। जब सुभारती के अंदर मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ तो मुझे अपने 5 साल के जर्नी का वो पहला साल याद आता है। घर से इतनी दूर, मन में हजारों शंकाएं, परंतु यहाँ के माहौल ने उन सभी शंकाओं को क्षण भर में दूर कर दिया। बात अगर एकेडमिक्स की करूँ तो मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी में हाथ जरा तंग थी। ना केवल मैं, मेरे घर वाले भी परेशान थे कि आखिर कैसे मैं इन चीजों को मैनेज कर पाऊंगा। मगर कॉलेज और टीचर्स का जो सपोर्ट मुझे और मेरे जैसे अन्य बच्चों को मिला, मैं आज ये कह सकता हूँ कि अब लैंग्वेज हमारे एकेडमिक्स में बैरियर नहीं रहा। साथ ही मूड कोट एक्सरसाइज, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस समय समय पर होते रहते हैं, जिनकी मदद से हम लॉ को ना केवल किताबों में बल्कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो यूथ पार्लियामेंट्स, डिबेट्स और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से सुभारती अवसरों का भंडार है। और यही कारण है कि मेरे जैसा एक छात्र जिसने 12वीं तक कभी माइक भी नहीं पकड़ी थी, वह आज राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ना केवल प्रतिभाग कर रहा है बल्कि मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती भी है। और मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो अलग अलग मंचों पर देश और सुभारती का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं अ जर्नी विच वेल बिगन इज ऑलमोस्ट हाफ डन। जिस दिन मैंने सुभारती को चुना, विधि क्षेत्र की इस जर्नी का वह शुरुआत था जिसने मेरे सफर को आधा तय कर दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता का मूल मंत्र जो मैं आज यहाँ से लेकर जाऊंगा, वो बचे खुचे मुसीबतों से भी मुझे विजय प्राप्त करवाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, प्राउड टू बी सुभारतीयन।
0: तो अभी अभी आपने उन छात्रों को सुना जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। बाकी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। चलते चलते एक मैसेज हम जरूर आपसे लेना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन तक हमारा ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है।
1: मैं अब एक केवल यही वाक्य कहना चाहूंगी बच्चों से कि आप अपने करियर पे फोकस करें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे अपने जो भी आपने क्षेत्र चुना है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अपना टारगेट सेट करें एंड हिट द टारगेट, तभी आप जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और शिक्षा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये बात आपने माइंड में बिठा लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य आपको सेवाएं देना है। सेवाएं किसको देना है? राष्ट्र को देना है। बिकॉज हम किस पर बिलीव करते हैं? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। विद दीज वर्ड, जय हिंद जय भारत।
0: बिल्कुल बात सही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एंड उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ, तब तक मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ हमेशा की तरह, कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, प्लीज हेलमेट लगाया कीजिए, और फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही जुड़े रहिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के साथ। जय हिंद जय भारत।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: तेरी याद आती है रात भर, तेरा असर इस कदर है कि फिरता हूँ दर बदर।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: रिंग पा देनी तेरे ऐतकी सियाल मैं।
1: हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में चल रहे कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत अब आप सुनेंगे एचपीवी वैक्सीन की जानकारी के साथ डॉक्टर बानिशा सुल्ताना को, आपके अपने दोस्त आर

0: बच्चे पंकज के साथ सिर्फ आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।
1: HPV वैक्सीन के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहिए।
2: ठीक है, HPV वैक्सीन अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, फ्री में लगवा देते 14 साल की लड़कियों को लगते है। अभी तो शुरुआत में गवर्नमेंट में ऐसे शुरू किया है, आशा करते हैं कि आगे जाके और भी बच्चों को लग जाए।
1: मैम कुछ तरीके के मिथ भी है इसको लेकर कि जैसे निशान हो रहे हैं या बुखार हो रहा है, तो क्या इनको साइड इफेक्ट में देखा जाएगा या ये नॉर्मल है?
2: ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट में नहीं है। और इनकी एक तो अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन बहुत महंगा है, अगर आप प्राइवेट में लगाने चाहते हो तो बहुत महंगा वैक्सीन है। और उसमें भी वर्ल्ड में, अमेरिका में और बाहर के देशों में भी जो वैक्सीन लगाया जाता है उसी वैक्सीन गवर्नमेंट के थ्रू दे देते हैं, फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में दे देते हैं।
1: उद्देश्य क्या है मैम ये महिलाओं को वैक्सीन लग रही है?
2: ये HPV वैक्सीन से कैंसर जो होती है उसकी रोक लेती है, मतलब उसको प्रिवेंट करते है, जो जैसे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैला जाते हैं जिस बीमारियां, वो होने से बचा देते है इस वैक्सीन।
1: आज हम जहाँ सेंटर पे आए हुए हैं यहाँ पर किस समय से किस समय तक महिलाएं या लड़कियां आ सकती हैं HPV वैक्सीन की जानकारी लेने के लिए या उसको लगवाने के लिए, उसके बारे में बता दें एड्रेस।
2: ये हमारी सूरज कुंड की पब्लिक हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे हमारी मेडिकल कॉलेज की भी अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है, दोनों यहीं पे जुड़ा हुआ है, सूरज कुंड में ही है। यहाँ पे आप 9 बजे से 1 बजे से आ सकते हो जानकारी लेने के लिए, कभी भी आप आ जाए, अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी वैक्सीनेशन वाला सेशन होती है उसी सेशन में वैक्सीन लग भी जाएंगे।
1: थैंक यू सो मच मैम, बात करें।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़े दान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद भारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH58 सुभारतीपुरम मेरठ में।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा जुनून है, तू ही मेरा दर्द है, तू ही मेरा सुकून है।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

रौन कर इश्क मेरा तुम किनारा कर गए, छोड़ गए मुझको बेसहारा कर गए, तुम चाहो तो भी ना मिल सको थे हम दर्द मेरे।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: एक्सक्लूसिव ऑन mgana.in।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: तेरी मेरी कहानी है।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किछोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाए सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: court.
1: वकालत की दुनिया में बनाए अपना नाम और अपना मकाम। आज ही आइए सुभारती लॉ कॉलेज, कोर्सेज ऑफर्ड BA, LLB, LLM, MPhil, UGPG कोर्सेज, PhD एंड मेनी मोर। विजिट नाउ सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, कॉल नाउ 9639010567 और विजिट अस सुभारती.org।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ।

0: दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक्सीलेंस का होना भी तो जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इज द रोड टू एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद अ सलूब्रियस एनवायरनमेंट, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी।
1: 18 कॉलेजेस एंड 220 प्लस प्रोग्राम्स। विजिट www.subharti.org।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।